0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा कि सताक्षी ये बताओ, वो कौन सा पड़ाव है जहां हमारा बचपन पीछे छूट जाता है, जहां इंसान खुद को बड़ा फील करने लगता है जब पहली तनख्वाह हाथ में आती है, या जब अपना शहर पीछे छूट जाता है अपने बिल खुद चुकाने पर? इस सवाल पर मैंने बहुत सोचा और बहुत ज्यादा जहन ने अंदर अंदर करवटे ली कि भाई ऐसा नहीं वैसा नहीं, और फिर मुझे समझ में आया कि पहली बार इंसान तब बड़ा होता है जब वो टूटता है, बिखरता है, अंदर से वो टूट जाता है लेकिन घर का नंबर डायल नहीं करता। वो तब बड़ा हो जाता है जब उसे ये लगता है कि मेरी वजह से लोगों को परेशानी ना हो, मेरी वजह से मेरे घर वाले परेशान ना हो जाएं। उस दिन वो इंसान सच में बड़ा हो जाता है। सोचिए मेरी बात को, और बहुत डीप बात है एक्चुअली, सच में, है ना? बहुत सोचने के बाद ये समझ में आया। आइए एक और ट्रैक के साथ अभी आगे चल रहे हैं, एंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए। इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी पर।

कुछ चीजें ना दोस्तों लाइफ में कभी वापस नहीं आती हैं। एक तो बचपन, एक गुजरा हुआ वक्त और वो लोग जो आपकी जिंदगी से चले जाते हैं। तो इसलिए जब आप खुद को बड़ा महसूस करने लगे, जब लगे कि आपने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लिया है, तो पैसे मत गिनिएगा बल्कि अपने आसपास उन लोगों को ढूंढिएगा कि क्या कोई एक ऐसा बंदा है आपकी जिंदगी में जिसके साथ आप बिना एक्टिंग किए आप खुद रह सके, ना पैसे वाले ना सक्सेस वाले। आप असल में जो बंदे हैं क्या आप उसके साथ रह सकते हैं? आपका वो बचपना जिंदा रह सकता है, आप उस वक्त को एंजॉय कर सकते हैं, आप खिलखिला सकते हैं उसके साथ। क्या कोई ऐसा बंदा आपके पास है? अगर है तो वही आपकी सबसे बड़ी सक्सेस है। रिकॉर्ड ट्रैक मेरे साथ सुनिए और कहीं मचाइएगा, यूं ही सुनते रहिए। इट हैपेंस।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: सो वेलकम बैक, इट हैपेंस सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर। और देखिए, हर किसी के सामने ना ओपन बुक बनना ज़रूरी नहीं है। ये वो दौर है जहां लोग पढ़ते तो हैं लेकिन समझने के लिए नहीं। आपकी कहानी उनके लिए एंटरटेनमेंट होती है, हीलिंग नहीं। वो सिर्फ गॉसिप के लिए आपको पढ़ते हैं। इसलिए जनाब, थोड़ा मौन रहा करिए, थोड़ा शांत और चुप रहा करिए। सब कुछ कह देना ही सच्चा नहीं है, कभी कभी खुद को बचाना ही समझदारी होती है। वो इंग्लिश में कहते हैं ना, नॉट एवरी वन डिजर्व एक्सेस टू योर हार्ट। और जिंदगी भी तो यही सिखाती है कि जो चीज हर जगह रख दी जाए उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसीलिए सबको सब कुछ मत बताइए, कुछ बातें अपने लिए भी रखिए, और जो समझना चाहेगा वो वैसे भी समझ लेगा, है ना। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ सुनिए और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी पर।
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

लाइफ में ना दोस्तों की वैल्यू पर बात करते हैं। लाइफ में दोस्तों की वैल्यू तब पता चलती है जब जिंदगी में सब दोस्त बिजी हो जाते हैं, लेकिन एक दोस्त जो है वो बिजी होने के बाद भी आपको मैसेज करता है। जब आपका खुद से भी बात करने का ना मन हो, उसके साथ बैठते ही आपको हल्का फील होने लगता है। ना वो सॉल्यूशन देता है आपको, ना वो आपसे बड़ी बड़ी बातें करता है, बस आपके साथ रहता है, आपको सुनता है, और यही तो काफ़ी है। तो उसी बेस्ट वाले फ्रेंड के नाम ही अगला ट्रैक सुनिए, और सताक्षी के साथ सुनते रहिए छापन्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 FM।

देखिए, जिंदगी में एक बात जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना आप फायदे में रहेंगे कि आपकी जिंदगी में आने वाला हर इंसान आपकी स्टोरी का परमानेंट कैरेक्टर नहीं होता है। कुछ लोग ना लाइफ में सिर्फ एक लेसन बनकर आते हैं और अपना चैप्टर पूरा करके चले जाते हैं। पहले मुझे लगता था कि जो चला गया उसके बिना जिंदगी रुक जाएगी, फिर वक्त ने मुझे सिखाया कि लोग चले जाते हैं पर जिंदगी नहीं, और इसीलिए जो आपकी वैल्यू को ना समझे उनके पीछे भागना छोड़ दीजिए, जाने दीजिए उन्हें और आप अपनी जिंदगी में मस्त रहिए। सताक्षी के साथ सुन रहे हैं आप इट हैपेंस रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर।

दोस्तों, ये था आज इट हैपेंस पर एक और हमारा गहरा साथ। कुछ जज्बातों, कुछ बातों और दिल के इरादों के साथ, कुछ नए गोल्स के साथ, एक नई उम्मीद के साथ कल फिर से मिलूंगी आपसे इसी सफर इट हैपेंस में। अब आज के सफर से आपसे विदा चाहती हूँ। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट डे।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।

0: just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Queensland vich har saal jangla vich ag lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di ag to bachav di yojana banao ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नू सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकारित।
2: सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हां तुहाडा हरप्रीत। एक बार फिर सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके असीं तुहाडे कोल आ रहे हैं।
3: The legend, Harbhajan Mann, live in Brisbane,
4: Saturday 15th August, 6:30 PM.
2: Milte hain ji Brisbane beach.
4: At Brisbane Central Auditorium, Mount Cravat. Tickets at Premier Tickets.
5: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सर वाने हम तेजी आर चे संदेश चालक दिनाल से बने हुए। अगली फिल्म थोड़ी जी पिछे जाने हैं 2015 दे, वो फिल्म का नाम हैगा मसान। नीरज गायवान दी जैप्यू फिल्म वाराणसी विच दो कहानियां, देवी जिस जो रिचा चड्डा बने से ते दीपक जो विकी कौशल बने से दी सामाजिक दबाव ते मुक्ति दी खोज, ये है कि है 2015 दे कांस फिल्म।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ, ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Queensland vich har saal jangla vich aag lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di aag to bachav di yojana banao ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नू सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकारित।
2: सत श्री अकाल मदाब नमस्कार दोस्तों, मैं हां तुहाडा प्रथम पजे एक बार फिर सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके असीं तुहाडे कोल आ रहे हैं।
3: The legend, Harbhajan Mann, live in Brisbane,
4: Saturday 15th August, 6:30 PM.
2: Milte hain ji Brisbane beach.
4: At Brisbane Central Auditorium, Mount Cravat. Tickets at Premier Tickets.
5: Digicel, better together.
6: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
7: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
8: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicellpacific.com.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखें। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बालाक्लावा स्ट्रीट, वोलोंगाबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660.

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके ऐसी तोड़े को ला रहे हैं।
1: The legend Harbhajan Mann live in Brisbane
2: Saturday 15th August 6:30 PM.
0: मिलते हैं जी Brisbane में।
2: At Brisbane Central Auditorium Mount Cravat. Tickets at Premier Tickets.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: दिस इज अमिताभ बच्चन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
1: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
5: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
6: पे। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
7: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे अनियार शेनिविया के साथ। और सबसे पहले मेरा सवाल, कैसे हो आप, कैसा फील कर रहे हो और क्या आपने मेरा इंतजार किया, क्या आप राह देख रहे थे मेरी, क्योंकि मैं तो आपकी राह देख रही थी। और मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि जल्दी से अपना प्रोग्राम शुरू करूंगी, जल्दी से बहुत सारी गपशप करूंगी, गाने सुनाऊंगी और मजेदार हम यहाँ पर माहौल बनाएंगे। सो मैं तो आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ, आप भी मुझे मिस करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बाय द वे, पिछले कल मुझे बहुत जोर से हिचकी आ रही थी, तो मुझे यही लग रहा था कि मेरे लिसनर्स ही मुझे याद कर रहे हैं। एंड या आई फेल्ट गुड। हिचकी आ रही थी, मुझे परेशानी हो रही थी, पर मुझे बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिसनर्स ही मुझे याद कर रहे हैं और हिचकी आना तो जरूरी है उस मामले में, राइट। सो दोस्तों, इसी के साथ आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम करते हैं और वो है एक हेल्दी रिचुअल प्रैक्टिस करना, विच इज डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। यानी कि हमें मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली हर तरह से हेल्दी रहना है और उसी के लिए हम ये करते हैं। तो सबसे पहले क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और आइए ऐसे ही अच्छा फील करते करते अब जरा करते हैं शुरुआत एक बढ़िया से गाने के साथ। और इस गाने का नाम है अभी कुछ दिनों से, जी हाँ, और मूवी का नाम है दिल तो बच्चा है जी। अगर आपने नहीं देखी है तो यू शुड गो फॉर इट एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी।

जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ प्रोग्राम शुरू हो गया है, तो अब जरा मौसम की बात कर ली जाए, यानी कि वेदर क्या कह रहा है, क्या कह रही है बरखा बहार और क्या कह रहे हैं बद्रा, सबके बारे में बात होगी। सबसे पहले मैक्सिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा, वहीं अगर अभी की बात की जाए तो 23.4 डिग्री सेल्सियस के करीब है टेम्परेचर। फील ऑन द अदर हैंड आपको हो रहा है 19.8 डिग्री सेल्सियस के करीब। जी हाँ, ये तो हुई दिन की बात। अब अगर रात की बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस यानी कि 11 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप तापमान में देख पाओगे। नो चांसेस ऑफ बारिश, जैसे मैंने कल ही कह दिया था आपको कि आज आपको बारिश जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। आसमान जो है वो साफ मिलेगा, बादल नहीं मिलेंगे, खिलखिलाता हुआ सूरज मिलेगा और विटामिन डी मिलेगी बहुत सारी। जी हाँ, इसी के साथ एयर क्वालिटी है एकदम फेयर। और आज की बात हो गई हो तो कल की ओर चलें, यानी कि फ्राइडे और सैटरडे को कैसा रहने वाला है मौसम का आलम। जी हाँ, 24 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ, नो चांसेस ऑफ बारिश और अगेन खिला खिला सा मौसम, यानी खुला आसमान और नीला नीला आसमान आपको दिखने वाला है और सूरज की किरणें आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाली है। वहीं सैटरडे की अगर बात करी जाए तो थोड़े से बादल मुझे नजर आ रहे हैं आसमान में और 30% चांसेस भी है बारिश के, और साथ में 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहने के चांसेस हैं। मतलब आज और कल तो बहुत ही अच्छा मौसम था, लेकिन अब कल जो है, मतलब कल भी अच्छा मौसम रहने वाला है, लेकिन उसके अगले दिन थोड़ा सा डाइसी हो सकता है। बट ठीक है, उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं, उसमें भी फेर बदल हो सकता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मौसम की और मौसम हमारी नहीं सुनता। लेट्स बी रियल।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Sasrikaal, madam, namaskar, dosto, main hoon toda Pradhan Pandit. Ek baar phir Satrangi Ping Australia Tour 2026 leke assi tuhade kol aa rahe
5: hain. The legend Harbhajan Mann live in Brisbane
6: Saturday 15th August 6:30 PM.
4: Milde hain ji Brisbane vich
6: at Brisbane Central Auditorium, Mount Cravat. Tickets at Premier Tickets.
7: Hi, this is Amitabh Bachchan.
8: And aap sun rahe hain Radio Brisbane.
9: Hi guys, I'm Madhvi for the Meat Brothers. Aap sun rahe hain Radio Brisbane.
10: Hi, this is Salman Khan.
11: And aap sun rahe hain Radio Brisbane.
12: Hi, this is Deepika Padukone. And aap sun rahe hain Radio Brisbane.
13: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
14: Hi, main hoon Tulsi Kumar. And aap mujhe sun rahe hain Radio Brisbane.
15: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
16: Hi, this is Ajay Devgan aur aap sun rahe hain Radio Brisbane.
17: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ प्रोग्राम चल रहा है इवनिंग वाइब, तो ऑफ कोर्स गाने भी चल रहे हैं एकदम आपकी वाइब को जबरदस्त बनाने वाले। और अब जरा आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन गाने हमारी तरफ से तो हम प्ले कर रहे हैं, आपका क्या सहयोग है इसमें? आपका भी तो योगदान होना चाहिए, मतलब आपका भी तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और वो आप कर सकते हैं अपने फेवरेट गाने फरमाइश करके, यानी कि रिक्वेस्ट करके या रेकमेंड करके। और इनफैक्ट अगर आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज डायल अ नंबर, और वो नंबर है +9182888717701। आई रिपीट, +9182888717701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठाइए, यही वाला नंबर डायल कीजिए, कॉल, व्हाट्सएप या मैसेज के थ्रू अपनी फरमाइश, रिकमेंडेशन या डेडिकेटेड सॉन्ग हम तक पहुंचा दीजिए। और बाकी का काम अपनी आरजे निव्या के कंधों पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी आरजे निव्या के कंधों में बहुत दम है। डोंट वरी, वो आपकी फरमाइश का भार, वेट संभाल लेगी। डोंट वरी अबाउट इट। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए।

फाइनली वो टोटल सोलर इक्लिप्स हो गया है जिसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही थी, और पूरी दुनिया का बात करना बनता भी है क्योंकि जो नज़ारे इस टोटल सोलर इक्लिप्स ने दिखाए हैं वो नज़ारा आज दिन तक कोई भी टोटल सोलर इक्लिप्स या पार्शियल सोलर इक्लिप्स या कोई भी सोलर इक्लिप्स हमें नहीं दिखा पाया। जी हाँ, जो लोगों ने जहां ये दिख रहा था, जी हाँ, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और इनफैक्ट अमेरिका के कुछ जगहों से जहां से ये दिख रहा था वहां के लोगों ने वीडियोस रिकॉर्ड की हैं, और वो वीडियोस इतनी ज्यादा खूबसूरत है, इतनी ज्यादा, और वो नजारा इतना गजब का है कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके चेकआउट कीजिए। जी हाँ, टोटल सोलर इक्लिप्स जो कि अभी अगस्त 12 यानी कि 12 और 13 को हुआ है, उसको देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या मजेदार सी, खतरनाक सी चीज थी। वेल, इतना मैं कह दूं कि ऐसा नजारा, जैसे मैंने कहा, कि पहले किसी भी सोलर इक्लिप्स ने नहीं दिखाया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या मतलब मजेदार सी चीज है ना, और मजेदार तो है क्योंकि जो सन है वो मून से 400 गुना बड़ा है। जी हाँ, 400 गुना बड़ा है, लेकिन फिर भी इक्लिप्स के टाइम पे, टोटल सोलर इक्लिप्स के टाइम पे वो मून जो है, वो चांद जो है, वो सन को यानी कि सूरज को पूरी तरह ढक लेता है। अब बनता नहीं है ये चीज होना, बट द थिंग इज, यहाँ पर 400 गुना अगर सूरज बड़ा है तो 400 गुना सूरज चांद से दूर भी है, और इसी वजह से ये चीज जो है वो कंपनसेट कर लेता है, इसी चीज से वो पूरी कर लेता है चांद, और वो उसको पूरी तरह कवर करने में जो है वो एकदम कामयाब हो जाता है। जी हाँ, 400 गुना बड़ा होना एक चीज है, लेकिन 400 गुना दूर होना भी एक चीज है, और जिस वजह से चांद जो है वो सूरज को पूरी तरह से ढक लेता है, और वही था ये टोटल सोलर इक्लिप्स। जी हाँ, इट वॉजंट जस्ट पार्शल बट टोटल, और पूरी तरह से सूरज को ढक लिया था चांद ने। मैंने जैसे कहा कि अगर आपने अभी तक ये नजारा नहीं देखा है तो जरूर देखिए। आई नो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और बहुत सारी जगहों से हम इस नजारे को नहीं देख पाए हैं क्योंकि हमारे यहां रात थी उस वक्त जिस वक्त ये सोलर इक्लिप्स हो रहा था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी जगह बहुत ही खूबसूरत तरीके से जहां पर ये नजर आया है बहुत ही जबरदस्त वीडियोस आई हैं। तो वॉच इट आउट एंड मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा, क्योंकि डेफिनेटली नजारा तो बहुत ही गजब का है। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: Satrangi Ping Australia Tour 2026 ਲੈਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ
1: The legend Harbhajan Mann live in Brisbane
2: Saturday 15th August 6:30 PM
0: ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਿੱਚ
2: at Brisbane Central Auditorium Mount Cravat Tickets at Premier Tickets
3: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं
4: तो उमसॉग से बात कर इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से
3: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूँ
4: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है
3: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा
4: बिल्कुल खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो
3: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी
4: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है भारत में नंबर +918-448-381-360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801 प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई ओमसॉग केयरिंग विद डिग्निटी
5: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद कॉल नाउ ऑन 04111270355 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपरवर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003
6: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks. And we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
7: Anuj, कोई अच्छा सा lawyer suggest करो ना. ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
8: अर्शाद lawyers है तुम्हारी problem का solution. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी वो सब में मदद कर सकती हैं और फिक्र करने की जरूरत नहीं है अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे अभी फोन करो 04209331711 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो
7: अरे वाह इनका पता बताना
8: अर्शाद लॉयर्स माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड ऑफिस 5 1644 लोगन रोड माउंट ग्रेविट एम्पल पार्किंग Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
9: दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बानी 1701 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे इंडिया के साथ दोस्तों इसी के साथ आपको तो पता ही है बात हम बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त चीजों के बारे में करते हैं और दुनिया में अभी आपने कुछ वक्त पहले देखा होगा कि न्यूयॉर्क की एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग पर चढ़कर एक रशियन कपल प्रपोज करता है एक दूसरे को और फिर उसके बाद जो है उनकी जो वीडियो है वो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो जाती है और इंटरनेट पर वायरल होने के साथ साथ उन्हें पुलिस जब उन्हें पुलिस पकड़ती है तो पुलिस जो है वो उनकी रिंग उनसे ले लेती है जिसके साथ उन्होंने प्रपोज किया होता है जी हाँ क्योंकि उन्होंने ये कारनामा किया था और इस कारनामे की वजह से उनको जेल में डाल दिया जाता है अब कपल ने प्रपोज तो कर दिया वो फियांसे भी बन गए लेकिन फियांसे बनकर पहली रात उनकी जेल में थी जी हाँ फिर उसके बाद किसी ने उनके इस कारनामे से बहुत ही ज्यादा जो है वो उनको वो पसंद आ गया किसी को उनका ये कारनामा और उन्होंने उनकी बेल करवा दी लेकिन जब बेल हुई तब भी पुलिस ने उनकी वो रिंग वापस नहीं की जो कि प्रपोजल के वक्त जो है वो उस लेडी को दी गई थी जी हाँ अब आप लोग बोलोगे कि ऐसा क्या ही प्रपोजल था वेल आपको नहीं पता वो रशियन कपल जो है वो फेमस है इनफैक्ट नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री है उनकी क्योंकि उनको आदत है ऐसे ही कहीं भी किसी भी देश में जाकर किसी बहुत ही बड़ी इमारत के एकदम टॉप पर चढ़ जाना और फिर वहां पर अजीबो गरीब हरकतें करना जी अब आप लोग बोलोगे कि नीवर शर्मा ठीक है जो कर सकता है उसे करने दो हम नहीं कर सकते तो ठीक है ना हम ऐसे देख के मतलब संतुष्टि कर लेंगे पर एटलीस्ट जो कर रहा है और जो कर सकता है जो केपेबल है उसे तो करने देना चाहिए जी हाँ अब ऐसे में न्यूयॉर्क की पुलिस उनको पकड़ के ले गई थी पकड़ के ले गई, जैसे मैंने कहा उनको जेल में डाल दिया गया,

कि आप ये खुफिया और खतरनाक और तूफानी काम कर रहे हो वो अलग लेवल पे है। जी हाँ, सो बस फिर क्या है, अब उस लवली रशियन कपल को उनकी रिंग वापस मिल गई है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि प्रपोजल के लिए वो इतनी बड़ी बिल्डिंग पर चढ़ गए थे तो शादी के लिए कहाँ चढ़ने वाले, क्योंकि उनको चढ़ने की आदत है बिल्डिंग्स। जी हाँ, आप लोग बोलोगे हमसे हमारे घर की सीढ़ियां नहीं चढ़ जाती, इनको देखो अलग ही मस्ती छाई हुई है, इनको बिल्डिंग्स पे चढ़ना है और वो भी कोई नॉर्मल नहीं, बहुत ही बड़ी बड़ी लाइक बुर्ज खलीफा टाइप। जी हाँ, दैट्स व्हाट आई मीन। सो या, बट अच्छी बात है, चलो कपल को उनकी रिंग तो वापस मिल गई, अब शादी का कारनामा देखते हैं कहाँ वो करते हैं, क्योंकि हर कंट्री की पुलिस जो है उनकी शादी पर जो है वो नजर बनाए रखेगी। मुझे लगता है कि कौन से देश में आके कौन से बिल्डिंग पर चढ़ने वाले हैं और कौन सी पुलिस को परेशान करने वाले। पुलिस वाले भी सोच रहे होंगे कि यार ए, अगर तुमको कपलगिरी ही करनी थी तो कहीं और जाके कर लेते, ग्रीस जाते, स्विट्जरलैंड जाते, फ्रांस जाते, इधर इतनी बड़ी बिल्डिंग पर चढ़ के क्यों कपलगिरी करी। क्योंकि बेचारे पुलिस वालों का काम बढ़ जाता है ना ऐसे कारनामों के बाद। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

मसीह साथ गलियां, तेरी गलियां और उनकी गलियां, जिसकी भी गलियां, मैं तो कहती हूँ कि गलियों में घूमने से नहीं काम चलेगा, उनके दिल की गलियों में घूमना पड़ेगा, उनके घर की गलियों में नहीं घूम के काम चलेगा। जी हाँ, तो इसी के साथ दोस्तों, इसी के साथ सैटरडे का क्या प्लान है आपका? जी हाँ, सैटरडे का प्लान है कुछ, क्योंकि यहाँ पर मैं आपका बहुत ही मजेदार सा प्लान बनाने वाली हूँ और उसको आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि हम सबके फेवरेट द लेजेंडरी हरभजन मान आ रहे हैं ब्रिस्बेन में सैटरडे को ही। जी हाँ, उनका टूर लेके जिसका नाम है सतरंगी पींगा। वाह क्या बात है, सतरंगी पींगा, पींगा मतलब झूले और सतरंगी मतलब सात रंगों वाली पींग। जी हाँ, मतलब सात रंगों वाला झूला जिसको आप झूलते हो, जो कि बेसिकली सावन में झूला जाता है और बहुत ही मजा उस झूले में आता है। आप मुझे बताइए कि आपको झूला झूलना पसंद है? जी हाँ, आई यू नो वट काइंड ऑफ झूला आई एम टॉकिंग अबाउट। सो या हरभजन मान आ रहे हैं 15 अगस्त यानी कि सैटरडे को ब्रिस्बेन सेंट्रल ऑडिटोरियम में, और अभी तक अगर आपने टिकट्स बुक नहीं की हैं तो कर लीजिए, और यहाँ पर आपके पास मौका है फ्री टिकट जीतने का भी। जी हाँ, फ्री टिकट मतलब नो पैसे बट ऑल द फन। सो मुझे लगता है कि आपको इसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन जो है वो पूछने वाली हूँ, एक क्वेश्चन जो है मैं आपके सामने रखने वाली हूँ, अगर आप उसका सही आंसर दे देते हो तो फिर आपको वो टिकट मिल सकती है और आपको वहां जाने का मौका मिल सकता है, दैट टू इन फ्री, बिल्कुल फ्री। जी हाँ, सो क्वेश्चन ये है कि हरभजन मान की वो कौन सी मूवी है जिसको पहला फुल वर्ल्ड वाइड थ्रेटिकल रिलीज मिला था। मतलब वो कौन सी मूवी है हरभजन मान की जिसको पूरी तरह से पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में थ्रेटिकल रिलीज होने का मौका मिला था, और वो बहुत ही जबरदस्त मूवी है उनके करियर की। अगर आप उस मूवी का नाम बता देते आपकी टिकट हो सकती है। और वो पहली मूवी कौन सी है, ना कोई ऐसी मूवी नहीं, वो पहली कौन सी मूवी है हरभजन मान के करियर की जिसको पूरी तरह से पूरी दुनिया में थ्रेटिकली रिलीज होने का मौका मिला था, मतलब फुल कमर्शियल रिलीज। आंसर दीजिए और नाम कर लीजिए अपने ये फ्री टिकट, और मजे से हरभजन मान की उस वाइब का मौका जो है, पार्ट बनने का जो है वो मौका आपके पास यहाँ पर है, तो छोड़िए मत। और यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए, अब क्योंकि हरभजन मान की बात हुई है तो कैसे हम उनका गाना नहीं प्ले करेंगे, राइट? तो जो गाना मैं प्ले करने वाली हूँ वो उनका बहुत ही लेजेंडरी गाना है, गाने का नाम है गल्ला गोरियां। जी हाँ, और ये हरभजन मान का गाना है ओए होए, जो कि उनकी पहली एल्बम मानी जाती है, उसका ये गाना है। सुनिए इसको और मजे कीजिए, और जैसे मैंने कहा है, क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसका आंसर दे दीजिए जल्दी से, और टिकट अपने नाम कर दीजिए। और मौका जो है, टाइम जो है वो बहुत कम है, क्योंकि सैटरडे को शो है और आपको ये टिकट कल ही मिल सकती है, बट ऑफ कोर्स आपको आंसर देना पड़ेगा। यहाँ पर जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ हरभजन मान का, वो है ये।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: built in for the stay.
1: लेकिन बेबी दुकान का ताला तोड़ने के लिए मुझे अंदर जाना पड़ा तो
2: मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते
3: ओनली कैडबरी कुकीज क्योंकि ओनली इस कुकी में है कैडबरी

हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा चलते हैं खबरों की दुनिया की तरफ। सबसे पहले WHO की चेतावनी आई है कि इबोला साबित हो सकता है बेहद घातक। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस गेब्रियसिस ने चेतावनी दी है कि अगर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में फैला इबोला का मौजूदा प्रकोप अगर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो ये अब तक का सबसे घातक इबोला प्रकोप बन सकता है। टेड्रोस ने पत्रकारों से कहा कि 2026 का ये प्रकोप मौजूदा रफ्तार पर 2014 और 2016 के इबोला प्रकोप को भी पीछे छोड़ सकता है। इस दौरान कम से कम 11,000 लोगों की मौत हुई थी। इस साल के इबोला प्रकोप की आधिकारिक घोषणा 15 मई को की गई थी। अब तक कम से कम 4,300 मामले सामने आ चुके हैं और 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 3 महीने में फैलाव रोकने की कोशिश, जी हाँ, WHO ने बुधवार को कहा कि वह अगले 3 महीने में वायरस के फैलाव को काबू में करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि WHO सिर्फ कह सकता है और इसने साफ नहीं किया है कि इसका मतलब 3 महीने में बीमारी को पूरी तरह खत्म करना नहीं है। लक्ष्य फिलहाल संक्रमण को फैलने से रोकना और उसकी रफ्तार कम करना है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक इबोला का ये प्रकोप मई में आधिकारिक तौर पर घोषित होने से कम 3 महीने पहले ही शुरू हो चुका था। WHO अफ्रीका के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद जनाबी ने बुनिया शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, और हम वायरस का पीछा कर रहे हैं लेकिन वायरस हमसे आगे है। उन्होंने बताया कि रिसर्च से पता चला है कि वायरस फरवरी से ही फैलना शुरू हो गया था। शुरुआत में कई मरीजों में इबोला की पहचान नहीं हो पाई और उनके लक्षणों को मलेरिया या टाइफाइड समझ लिया गया।

दोस्तों, इसी के साथ खबरों की बात हो रही है और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने फ्रांस को क्या नसीहत दी। जी हाँ, अब यहाँ पर अमेरिका के साथ साथ ये मतलब ऑफ कोर्स ईयू की भी यहाँ पर शामत आई हुई है, क्योंकि ईरान को लगता है कि ईयू ने पूरा पूरा साथ दिया है। ऑल्दो ईयू साथ नहीं दिया है क्योंकि वो बचने की कोशिश कर रहे थे, पर अब वो लपेटे में आ चुके हैं। जी हाँ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची ने फ्रांस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि फ्रांस जैसे देशों को दुनिया को मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर भाषण देना बंद कर देना चाहिए। अब्बास अराग्ची ने गजा में इसराइल की कार्रवाई के लिए फ्रांस के समर्थन और ईरान के खिलाफ कथित आक्रामकता का जिक्र करते हुए कहा कि इन नीतियों ने फ्रांस के उस ऊंचे नैतिक स्थान को खत्म कर दिया है जिसे वह अपने लिए मानता था। अराग्ची ने एक्स पर लिखा कि इस मामले में पाखंड साफ नजर आता है और ये शर्मनाक है। अराग्ची का यह बयान फ्रांस की विदेश नीति और मध्य पूर्व में उसकी भूमिका को लेकर ईरान की कड़ी नाराजगी को दर्शाता है। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और बड़े मजेदार सा गाना आप सबके लिए।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Queensland vich har saal jangla vich ag lagdi hai. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰ।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
3: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका to win one of the fuel vouchers or shopping vouchers worth $100 every week. Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.
4: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, इसी के साथ अब जन्मदिन मुबारकबाद देने का वक्त हो गया है किसको? वेल ऑफ कोर्स बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री को। और वो अभिनेत्री कौन है, क्या आप गेस कर सकते हैं? कीजिए। वेल, वो अभिनेत्री हमारे साथ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बिजलियां हमारे ऊपर गिराई हैं, वो हमें हमेशा याद रहेंगी। जी हाँ, शी इज लिटरली द मोस्ट ब्यूटिफुल श्रीदेवी। या श्रीदेवी की बात हो रही है, और श्रीदेवी की जब हम बात करते हैं ना, तो सिर्फ हम ही उनकी इज्जत नहीं करते, बल्कि बड़े बड़े एक्टर्स भी उनकी इज्जत करते हैं। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि वेन इट कम्स टू रिस्पेक्ट, बहुत कम जो है वो एक्ट्रेसेस जो है वो इस लेवल की रिस्पेक्ट जो है वो कमांड करती थी। फिर चाहे वो वैजयंती माला हो, फिर चाहे वो वहीदा रहमान जी हो, बेसिकली वहीदा रहमान जी और यहाँ पर श्रीदेवी, बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं वो खड़े हो जाया करते थे, अपनी चेयर्स जो है वो छोड़ देते थे जब श्रीदेवी सेट पर आती थी। जी हाँ, तो श्रीदेवी का जन्मदिन है आज। ऑफकोर्स वो हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका बर्थडे है, सो ऑफकोर्स हम उनके गाने जो है वो प्ले करने वाले हैं। और गेस कर सकते हैं आप कौन सा गाना प्ले करने वाली हूं मैं? सोचिए, अरे सोचिए तो सही, आपका फेवरेट गाना कौन सा है श्रीदेवी का? चलिए वो सब छोड़िए, मैं आपसे पूछ रही हूं कि आपका फेवरेट गाना श्रीदेवी का कौन सा है। क्या आपको श्रीदेवी की मिस्टर इंडिया पसंद है? क्या आपको श्रीदेवी की कोई और पसंद है? मतलब इतनी सारी मूवीज और इतनी जबरदस्त एक्टिंग, लेजेंड। और इनफैक्ट अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको एक और चीज बता दूं कि श्रीदेवी के टेम्पल्स भी बनाए गए हैं उनके फैंस के द्वारा। जी हाँ, आपने सही सुना, श्रीदेवी के टेम्पल्स बनाए गए हैं साउथ इंडिया में उनके फैंस के द्वारा। मतलब ना सिर्फ एक्ट्रेस, जबरदस्त लेजेंडरी एक्ट्रेस, बल्कि उनको भगवान और देवी मानते हैं उनके फैंस आज भी। जी हाँ, जो गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ वो बहुत ही खूबसूरत है, और उसका नाम है हवा हवाई। जी हाँ, और अगेन जैसे मैंने कहा कि जब भी हम बात करते हैं श्रीदेवी की, हमें गाना याद है बिजली गिराने मैं हूँ आई। मैं यही कहूंगी कि श्रीदेवी जो है आज इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है, पर उनकी याद, उनकी आर्ट, उनकी एक्टिंग, उनका अभिनय हमेशा हमारे साथ इस दुनिया में रहने वाला है. एंड या आज उनका जन्मदिन है, तो ये खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए.

साथ देखी थी कि आपने कर्ज मूवी, क्योंकि कर्ज मूवी के दो वर्जन बने हैं, एक पुरानी और एक नई, भी अब पुरानी ही हो गई है क्योंकि इसको भी बहुत वक्त हो गया है। बट या बदले की ये कहानी है क्योंकि इसमें जो नायिका है वही खलनायिका है। चलिए इससे ज्यादा मैं स्पॉइल नहीं करूंगी इन केस आप देखना चाहोगे और आपने नहीं देखी है। दोस्तों इसी के साथ एक और बहुत ही फनी चीज हुई है पिछले कल, जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी। जी हाँ, सो अपेरेंटली कुछ महीने पहले से ही ये चर्चा हो रही थी कि 12 अगस्त को, यानी कि 12 अगस्त को अर्थ जो है वो अपनी ग्रेविटी लूज करेगी कुछ सेकंड के लिए। जी हाँ, और अगर ग्रेविटी लूज करेगी अपनी कुछ सेकंड्स के लिए अर्थ, तो उसका मतलब यही है कि हम लोग उड़ना शुरू कर देंगे हवा में। जी हाँ, क्योंकि मून पे ग्रेविटी नहीं है और मून पे हम लोग उड़ते रहते हैं। बट ऐसे बहुत सारे लोगों ने बात की कि यू नो दिस इज व्हाट इज गोना हैपन, ये तो होएगा, बिल्कुल होएगा, अर्थ जो है वो ग्रेविटी लूज करेगी। नासा ने पिछले कल बड़े ही अच्छे से कहा कि देखो भाई, मतलब साइंस भी कोई चीज होती है, मतलब कहां से पता चल गया तुमको कि अर्थ ग्रेविटी लूज करने वाली है? कौन, चाचा जी बाबा जी तुमको बता रहे हैं? जी हाँ, नासा ने कह दिया कि अर्थ की ग्रेविटी इज डिटरमाइंड बाय मास, बाय इट्स मास एंड कैन नॉट सिंपली स्विच ऑफ। जी हाँ, सो नासा ने एक्सप्लेन कर दिया कि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो डिटरमाइन करती है बाय इट्स मास एंड कैन नॉट सिंपली स्विच ऑफ, ऐसे ही स्विच ऑफ नहीं हो सकती। जी हाँ, और कुछ लोग कह रहे थे कि इसके पीछे शायद टोटल सोलर इक्लिप्स भी हो सकता है, तो नासा ने यह भी कह दिया कि देखिए टोटल सोलर इक्लिप्स डेफिनेटली होने वाला है, लेकिन उसका कोई असर अर्थ की ग्रेविटी पे नहीं पड़ेगा। जी हाँ, और जैसे मैंने कहा कि ये रूमर जो है वो बहुत वक्त से जो है वो उड़ रहा है कि 12 अगस्त 2026 को अर्थ जो है वो अपनी ग्रेविटी लूज करने वाली है कुछ सेकंड्स के लिए, और उन कुछ सेकंड्स में हम लोग हवा में उड़ना शुरू कर सकते हैं, और फिर जब फिर से ग्रेविटी आ जाएगी तो हम फिर से धड़ाम करके नीचे धरती पर गिर जाएंगे। जी हाँ, लेकिन अगेन, जिन्होंने भी ये रूमर उड़ाया उनको काम कुछ नहीं है, सच में कुछ काम नहीं है उनको, बस ये फालतू की बातें करनी है। अर्थ अपनी ग्रेविटी लूज कर रही है, मार्स जो है वो ब्लू हो रहा है, सैटर्न जो है वो अपने रिंग्स खो रहा है, मतलब ये सारी बातें उनको करनी है। बाय द वे, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, सो बातें करने दो। नासा ने कह दिया कि ऐसा नहीं हुआ, और सच में ऐसा नहीं हुआ। 12 अगस्त हो गया, हम 13 अगस्त में आ गए, एंड देयर इज नो वे कि मैंने देखा हो कि अर्थ ने अपनी ग्रेविटी को लूज किया हो। आप मुझे बताइए, क्या आपने भी ये बेकार सवाहियात से रूमर सुना था? जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, I'm Tulsi Kumar, and you are listening to Radio Brisbane.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shah Rukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan, and you are listening to Radio Brisbane.
10: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Brisbane. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
11: Fire ants, tuhade ilake vich maujood han. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਿੱਟ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
12: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
13: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune.
14: जी हाँ दोस्तों, इसके साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 107.1 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निबिया के साथ। एंड यू नो व्हाट गाइस, आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में रहकर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा काम कर दिया है। जी हाँ, एंड इट इज फॉर ऑल द जिग वर्कर्स जो कि डिलीवरीज करते हैं, फूड डिलीवरीज या कोई भी डिलीवरीज, जिनको जो है उनका मिनिमम वेज रेट जो है वो यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि उनको इतने तो मिलने ही वाले हैं। मतलब उनका जो वेज रेट है वो अभी तक फ्लेक्सिबल था, जो एम्प्लॉयर्स होते थे वो अपने हिसाब से उन्हें पे करते थे, लेकिन अब उनका मिनिमम वेज यानी कि पे स्टैंडर्ड जो है वो बना दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और ऑस्ट्रेलिया ये पहली करने वाली पहली कंट्री बन गई है। जी हाँ, सो आई एम फीलिंग प्राउड राइट नाउ लिटरली। जी हाँ, सो मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, अथॉरिटीज ने कर दिया है फिक्स रेट जिग वर्कर्स के लिए 31.30 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। जी हाँ, और अगर हम US डॉलर में बात करें तो ये $20 पर आर के करीब होगा। मतलब इतने पैसे तो एम्प्लॉयर को या कंपनीज को उनको देने ही पड़ेंगे पर आर, नहीं तो काम नहीं बनेगा, नहीं तो सिचुएशन गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि अब ये रूल बन चुका है। एंड यू नो व्हाट, ये द फेयर वर्क कमीशन जो है उन्होंने अप्रूव किया है न्यू स्टैंडर्ड्स फॉर वर्किंग डिलीवरी फूड ड्रिंक्स एंड ग्रोसरीज थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग उबर ईट्स एंड डोरडैश। सो या, अब से जो है जितने भी जिग वर्कर्स हैं, जितने भी जो डिलीवरीज करने वाले हैं, उनको एटलीस्ट $20 पर आर जो है वो वेज रेट के हिसाब से मिलने वाले हैं पैसे, विच इज अ ग्रेट थिंग, क्योंकि मिनिमम वेज रेट बहुत सारी जॉब्स के लिए अभी तक डिसाइड किया गया था, लेकिन जिग वर्कर्स जो है वो इसका शिकार बन जाते थे, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर एम्प्लॉयर्स की तरफ से रखी जाती थी, कुछ को ज्यादा मिलता था, कुछ को काफी कम मिलता था। सो ऐसे में यहाँ पर डिसाइड हो चुका है कि $20 पर आर तो एम्प्लॉयर को देने ही पड़ेंगे डिलीवरी पार्टनर्स को। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि जबरदस्त होने वाला है, और जबरदस्त होने के साथ ये आपको बहुत सारी चीजें फील करवाएगा, क्योंकि ये है मैं वापस आऊंगा का गाना, जो कि नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है। जरूर देखिए और मुझे बताइए आपको कैसी लगी, और बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी है, ऑफकोर्स इमोशनल भी आपको करेगी, एंड इसमें आपको वेदांग रैना, शर्वरी बाग एंड दिलजीत दोसांझ मिलने वाले हैं।
0: आजा बेबी

जी हाँ दोस्तों, तो गाना सुना आपने और यही आप सुन सकते हो लाइव भी। जी हाँ, तो मुझे नहीं पता आपका सैटरडे को क्या प्लान है, लेकिन अगर कोई प्लान नहीं है तो बना लीजिए, क्योंकि हरभजन मान आ रहे हैं ब्रिस्बेन में, ब्रिस्बेन सेंट्रल ऑडिटोरियम में 15th of August, यानी कि ये जो सैटरडे आ रहा है इसी दिन, और मजेदार आपके वक्त को बना देंगे, वाइब जो है एकदम खतरनाक बना देंगे। सो उनका टूर सतरंगी पींगा जो है वो ब्रिस्बेन में गया है, और ये जबरदस्त सा टूर का अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं लिया तो क्या लिया। जी हाँ, सो अगर आपने टिकट्स बुक नहीं की हैं तो आपके लिए एक फ्री टिकट जीतने का मौका है। जी हाँ, मतलब आप हरभजन मान के इस कॉन्सर्ट का, इस शो का पार्ट बन सकते हो, दैट टू इन फ्री। ऑल यू नीड टू डू इज आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, और वो क्वेश्चन क्या है, वेल, हरभजन मान की वो कौन सी पहली मूवी थी जिसको वर्ल्ड वाइड कमर्शियली रिलीज किया गया था। जी हाँ, वर्ल्ड वाइड कमर्शियली रिलीज किया गया था, वो कौन सी मूवी है हरभजन मान की, अगर आप मुझे बता देंगे तो आपके पास मौका होगा फ्री टिकट जीतने का। और अगेन, फ्री चीजें किसको बुरी लगती हैं, राइट? और इस मजेदार से वक्त का, इस मजेदार से माहौल का पार्ट बनने के लिए आपको बस इस क्वेश्चन का आंसर देना है, तो जल्दी से दे दीजिए और फ्री टिकट आपको मिल सकती है, तो मौका मत छोड़िए। और इसी के साथ यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
5: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, प्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
6: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब सेगमेंट जो है वो शुरू हो रहा है। ऑल द सेगमेंट ऑलरेडी शुरू हो गया है गाने के हिसाब से, लेकिन अब अनाउंस करना बाकी था तो वो हम कर रहे हैं। मतलब ओल्ड इज गोल्ड शुरू हो रहा है, मतलब वही है कि पुराने गाने, पुराने किस्से, पुराने तराने, यही डिस्कस होंगे। और सबसे पहले मैं आज आपसे एक चीज गेस करने के लिए पूछने वाली हूँ, क्योंकि उस एरा की एक बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री का जन्मदिन है आज। जी हाँ, गेस करेंगे किसका है? जी हाँ, ना कीजिए कीजिए, थोड़ा तो कीजिए। चलिए हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको सुनाएंगे एक और खूबसूरत सा गाना जिसका नाम है छलका ये जाम।

0: होठों के।
1: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगर आपने गेस कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो मैं बात कर रही हूँ 60s की नंबर वन एक्ट्रेस वैजयंती माला जी की। जी हाँ, वैजयंती माला जी आज 93 इयर्स की हो गई हैं, जी हाँ 93 साल की, और यहाँ पर उनकी एक्टिंग के जलवे हमारी आंखों में हमेशा ताजगी भरे रहेंगे। जी हाँ, मतलब उनकी एक्टिंग, उनका डांस, अब अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि वैजयंती माला जितनी अच्छी एक्ट्रेस रही हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छी डांसर वो रही हैं। एंड शी वाज अ ट्रेंड डांसर। जी हाँ, वो साउथ इंडिया से आती हैं और साउथ इंडियन डांस फॉर्म्स में वो ट्रेंड रही हैं। दैट वॉज द रीजन कि जब भी उनके डांस सीक्वेंस होते थे या सॉन्ग सीक्वेंस होते थे उसमें वो इतने अच्छे से परफॉर्म करती थी। तो सबसे पहले तो वैजयंती माला जी को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से, और ऐसा कहा जा रहा है कि इवन एट 93 शी इज फिटर देन एनीवन। जी हाँ, मतलब 93 में भी वो काफी फिट हैं और उन्होंने अपने आप को काफी चलता फिरता रखा हुआ है, जो कि बहुत ही रिमार्केबल बात है। अगेन, वैजयंती माला जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं उनका गाना, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, वो प्ले करने वाली हूँ, और यही कहूंगी कि ये साल आपके लिए खुशियों से भरा रहे वैजयंती माला जी, और आप ऐसे ही मुस्कुराती और खूबसूरत बनी रहे। जी हाँ, हेल्थ रहे, वेल्थ रहे, और ये रहा आपका ये खूबसूरत सा गाना।

तो वैजयंती माला की फिल्मी करियर जितना जबरदस्त था, उनकी जो पर्सनल लाइफ रही है वो भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रही है, बहुत ही ज्यादा दिलचस्प रही है और बहुत ही ज्यादा फिल्मी रही है। जैसे मैं ये बता रही थी कि कैसे नरगिस ने डिसाइड किया जब वो आग में फंस गई थी और लिटरली लिटरली उन्हें बचाने जो है वो सुनील दत्त आग में कूद पड़ते हैं और उसी वक्त उन्हें पता चल जाता है कि मेरी जिंदगी का हम सफर यही बन सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। जी हाँ, दैट्स व्हेन शी डिसाइडेड। एंड यहाँ पर वैजयंती माला की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जी हाँ, वैजयंती माला जो कि एक फिल्म की शूटिंग करते वक्त झील में गिर जाती हैं और झील में गिर जाने की वजह से उन्हें निमोनिया हो जाता है। निमोनिया होने पर जो डॉक्टर उन्हें ट्रीट करते हैं उनका नाम था चमनलाल बाली, और चमनलाल बाली उनको ट्रीट करते करते यानी कि उनका ट्रीटमेंट करते करते कब उनके दिल में घर कर जाते हैं पता ही नहीं चलता। एंड दैट्स व्हेन वो कहते हैं कि यू नो व्हाट, आई हैव फाउंड द लव ऑफ माय लाइफ एंड आई एम गोना गेट मैरिड, एंड दैट्स व्हाट शी डिड। वैजयंती माला ने चमनलाल बाली से शादी की और उसके बाद वो हमेशा के लिए चेन्नई में शिफ्ट हो गई, पूरी तरह हाउसवाइफ बन गई। पर आप खुद सोचिए कि इतनी फिल्मी स्टोरी, मतलब फिल्मों में हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं फिल्मों में जो होता है वो रियल में थोड़ी होता होगा, बट आप खुद ही देख लीजिए नरगिस और वैजयंती माला की जो पर्सनल कहानी है, उनकी जो लव स्टोरीज हैं वो बिल्कुल फिल्मी है और ये खूबसूरत से किस्से हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। राइट, यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इन खूबसूरत गानों का सफर जो है वो अब खत्म हो रहा है। मतलब गानों का सफर चलता रहेगा क्योंकि रेडियो ब्रिजवाणी सुनिश्चित करता है, मेक श्योर करता है कि आप अच्छे अच्छे गाने सुनते रहे। बट इवनिंग वाइब में इन गानों का सफर जो है वो अब खत्म हो रहा है। मतलब इवनिंग वाइब का सफर अभी के लिए खत्म हो रहा है। कल हम आपसे मिलेंगे, और कल कोई नॉर्मल दिन नहीं है, कल है फ्राइडे। तो ऑफकोर्स वी आर गोना सेलिब्रेट द फ्राइडे, और बहुत सारी मस्ती गपशप आपके साथ होगी। आज के लिए आप मजे में रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, और सुनते रहिए रेडियो ब्रिजवाणी 107.1 AM। ये लास्ट सॉन्ग आते जाते खूबसूरत आवारा आप सबके लिए।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता. कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ. फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं.
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल. ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया. ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सॉर्ग, स्पेल्ड OMSORG. वेबसाइट omsorg.co.in. व्हाट्सएप या कॉल कीजिए. इंडिया नंबर 844-838-1360. ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रसवानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा। स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। रॉयल क्वींसलैंड शो इक्का में रोबोटिक ड्रग्स डॉग्स की एंट्री। ब्रिस्बेन का बहुचर्चित रॉयल क्वींसलैंड शो यानी एक्का बड़ी धूमधाम से चल रहा है। इस बार मेले में मुख्य आकर्षण का केंद्र बनने हैं रोबोटिक डॉग्स, जो मैदान में भेड़ों की चरवाही का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक स्टेडियम का नया डिजाइन जारी। जी हां, वर्ष 2032 के ब्रिस्बेन ओलंपिक खेलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। क्वींसलैंड सरकार ने ओलंपिक स्टेडियम कॉम्प्लेक्स का नया कॉन्सेप्ट प्लान सार्वजनिक किया है। इसमें स्टेडियम के आसपास अत्याधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और इको फ्रेंडली परिसरों के निर्माण की रूपरेखा दिखाई गई है। वहीं क्वींसलैंड के पूर्व सैनिकों के लिए नई योजना का शुभारंभ। क्वींसलैंड सरकार ने राज्य में रह रहे 1,63,000 से अधिक पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की मदद के लिए पहले क्वींसलैंड वेटर्न्स स्ट्रेटेजी लॉन्च की है। इसके तहत पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य, रोजगार और आवास की सुविधाओं के लिए विशेष फंड और सहायता दी जाएगी। वहीं तट पर फंसी हम्पबैक वेल को बचाने का अभियान जारी। क्वींसलैंड के समुद्री तट पर एक युवा हम्पबैक वेल के रेत में फंसने की खबर सामने आई है। स्थानीय वॉलंटियर्स और समुद्री जीवों के विशेषज्ञ पानी के छिड़काव और विशेष उपकरणों के जरिए वेल को सुरक्षित गहरे पानी में वापस भेजने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। वहीं क्वींसलैंड में होगा साक्रूज और ब्राजील का ब्लॉकबस्टर मैच। फुटबॉल फैंस के लिए ब्रिस्बेन से बड़ी खुशखबरी है। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय टीम साक्रूज फीफा विश्व कप के बाद क्वींसलैंड के मैदान पर ब्राजील की विश्व प्रसिद्ध टीम के खिलाफ दो दोस्ताना मुकाबले खेलेगी। वहीं माउंट इसा रोडियो में दिखा घुड़सवारों का जलवा। क्वींसलैंड के आउटबैक क्षेत्र में मशहूर माउंट इसा रेडियो का आयोजन शुरू हो गया है। इस पारंपरिक और साहसिक खेल उत्सव में देश भर के बेहतरीन घुड़सवार और काउबॉय अपनी राइडिंग बुल राइडिंग की कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं

0: के साथ अब चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले वंदे मातरम को मिली राष्ट्रगान जैसी कानूनी सुरक्षा। देश के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर बड़ा फैसला आया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उस नए संशोधन विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राष्ट्रीय गीत का अपमान करना अब दंडनीय अपराध होगा। वहीं कर्नाटक में गुटखा और निकोटिन प्रोडक्ट्स पर एक साल का बैन। कर्नाटक सरकार ने जनता की सेहत को ध्यान में रखते हुए पूरे राज्य में तंबाकू, गुटखा और निकोटिन से बने उत्पादों की बिक्री का वितरण अब एक साल के लिए पूरी तरह रोक दिया है। वहीं टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का इस्तीफा। कॉरपोरेट जगत से बड़ी खबर आ रही है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने अपनी पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। हालांकि वह फरवरी 2027 तक इस जिम्मेदारी को संभालते रहेंगे। वहीं नौसेना को मिला नया गश्ती पोत श्रुति। जी हाँ, भारतीय नौसेना की ताकत में एक और बड़ा इजाफा हुआ है। कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स में निर्मित अगली पीढ़ी के ऑफशोर गश्ती पोत श्रुति को औपचारिक रूप से समुद्र में लॉन्च कर दिया गया है। वहीं मुकेश अंबानी का परिवार देश में सबसे अमीर। जी हाँ, हुरुन इंडिया फैमिली बिजनेस लिस्ट 2026 जारी हो चुकी है। इस लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का परिवार लगातार तीसरे साल भारत का सबसे मूल्यवान बिजनेस घराना बना हुआ है। वहीं सोने के दामों में फिर आई तेजी। अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो आपकी जेब थोड़ी ढीली हो सकती है। जी हाँ, सोने के दामों में फिर से उछाल देखने को मिला है। 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 15,486 रुपए प्रति ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। इसी के साथ अब चलते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले चीन का अंतरिक्ष रॉकेट हवा में ही फटा। अंतरिक्ष मिशन के दौरान चीन को बड़ा झटका लगा है। चीन का लॉन्ग मार्च 7A रॉकेट, जो एक नया संचार उपग्रह लेकर रवाना हुआ था, उड़ान भरने के महज 85 सेकंड्स बाद ही आसमान में एक जोरदार धमाके के साथ नष्ट हो गया। वहीं ईरान में सजाए मौत पर 25 से ज्यादा देशों का कड़ा एतराज। ईरान में प्रदर्शनकारियों को दी जा रही मौत की सजा के खिलाफ दुनिया भर से आवाजें उठने लगी हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और यूरोपीय संघ समेत 25 से ज्यादा देशों ने एक साझा बयान जारी कर ईरान सरकार की कड़ी निंदा की है। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इस समुद्री मार्ग पर पूरी तरह अमेरिकी नौसैनिकों का नियंत्रण है। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान शासन के 5 साल पूरे। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में तालिबान के 5 साल के शासन पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में माना गया है कि देश में सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है और अफीम की खेती पर रोक लगी है। वहीं यूरोप में दिखा अद्भुत पूर्ण सूर्य ग्रहण। जी हाँ, यूरोप के कई देशों खासकर स्पेन में एक अद्भुत खगोलीय नजारा देखने को मिला है, जहां पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी कि टोटल सोलर इक्लिप्स के कारण दिन में ही पूरा अंधेरा छा गया। इस दुर्लभ नजारे को देखने के लिए लाखों लोग सड़कों पर उतरे और वैज्ञानिकों ने भी इस दौरान कई महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाए। वहीं रोम में होगी इसराइल और लेबनान के बीच शांति वार्ता। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव को कम करने की दिशा में एक नई उम्मीद जागी है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि इसराइल और लेबनान के प्रतिनिधियों के बीच सितंबर को पहले हफ्ते में इटली की राजधानी रोम में शांति वार्ता का नया दौर आयोजित किया जाएगा। वहीं अब चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम 198 रनों पर ढेर। जी हाँ, डार्विन में खेले जा रहे टेस्ट मैच में बांग्लादेश के गेंदबाजों ने कमाल कर दिया है। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हसन महमूद के 6 विकेटों के शानदार स्पेल की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम अपनी पहली पारी में महज 198 रनों पर सिमट गई। वहीं भारत में खेली जाएगी भारत अफगानिस्तान T20 सीरीज। क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत में 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज की मेजबानी करेगा। वहीं तैराक कैटी लेडिकी का 16 साल का विजयी सफर बरकरार। अमेरिका की स्टार तैराक कैटी लेडेकी ने एक बार फिर अपना परचम लहराया है। उन्होंने पैन पैसिफिक स्विमिंग चैंपियनशिप में 1500 मीटर का फ्रीस्टाइल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 16 सालों से चली आ रही अपनी अजय बढ़त को कायम रखा है। वहीं रोनाल्डो ने मेसी के लिए भेजा भावुक संदेश। फुटबॉल जगत के दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने खेल भावना की एक खूबसूरत मिसाल पेश की है। लियोनेल मेसी के पिता के निधन पर रोनाल्डो ने सोशल मीडिया के जरिए मेसी को गहरा दुख व्यक्त करते हुए इस मुश्किल वक्त में मजबूत रहने का संदेश भेजा है। वहीं ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में भारतीय खिलाड़ियों की टक्कर रियाद में चल रहे ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के चेस सेगमेंट में भारत के युवा ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी ही देश के निहाल सरीन को मात दी। इसके साथ इंग्लैंड क्रिकेट टीम से कर्फ्यू नियम खत्म। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए अच्छी राहत की खबर है। टीम प्रबंधन ने दौरों के दौरान खिलाड़ियों पर रात में बाहर निकलने पर लगाए जाने वाले कर्फ्यू नियम को हटा दिया है। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM।
1: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका To win one of the fuel vouchers or shopping vouchers worth $100 every week. Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.
2: Mera naam Dr. Kumar hai aur yahan kuch aisa hai jise janna acha hai. Ek naya National Lung Cancer Screening Program shuru hua hai. Ye saral hai, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
3: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
4: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
3: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
4: अरे, ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
3: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
4: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
3: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
4: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
5: सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हां थोड़ा प्रणत प्रजित। एक बार फिर सतरंगी बींग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके असीं तुहाडे कोल आ रहे हैं।

0: कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butchers supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

ज्ञान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

जान पहचान हो जीना आसान हो, जान पहचान हो जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ, जान पहचान हो जीना आसान हो।

इंसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Sat Sri Akal, madam, namaskar, dosto, main hoon toda Prathak Pandit. Ek baar phir ਸਤਰੰਗੀ ਪਿੰਗ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂਰ 2026 ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।
3: ਦ ਲੈਜੈਂਡ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਲਾਈਵ ਇਨ ਬ੍ਰਿਸਬਨ
4: ਸੈਟਰਡੇ 15th ਅਗਸਤ 6:30 PM
2: ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਵਿੱਚ
4: ਐਟ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਸੈਂਟਰਲ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਮਾਊਂਟ ਕ੍ਰਵਾਟ। ਟਿਕਟਸ ਐਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਟਿਕਟਸ।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: हेलो
1: हाय दिस इज अमिताभ बच्चन
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय गाइस आई एम मनमीत वन ऑफ द मीत ब्रदर्स आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय दिस इज सलमान खान
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: हाय दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी दिस इज आलिया।
8: हाय मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी दिस इज शाहरुख खान।
10: हाय दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटन यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com. बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूँ?
2: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

हाँ जी, तक पर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 एम ते जी आर छे संदेश अलग दिन से बने हुए हो। इस तो बाद अगला जिहड़ा नाम है इस लिस्ट दे विच वो है जी कोर्ट स्टे कोर्ट स्टेट वर्सिज अनुबर जी कोर्ट ते चैतन्य थामने दी ए एक होर फिल्म कोर्ट ने 2024 दे वेनिस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते सी लायन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड ते ओरिजोंटी कैटेगरी विच बेस्ट फिल्म। ए फिल्म भारतीय कानून व्यवस्था विच विसंगतियां नु करारा व्यंग हैगा उसते जिस विच एक लोक गायक ते आत्महत्या दे लई उकसाउण दा आरोप लग्या हैगा। इस दे नाल ही एक होर फिल्म बारे दसनी है वह हैगी है जी पर्च्ड। लीना यादव वालों निर्देशित पर्च्ड पेंटू भारत विच महिलावां दे दमन उते उसते प्रतिरोध की कहानी हैगी है। इस फिल्म ने दुनिया भर विच इस नूं बहुत पसंद किया गया। इस फिल्म ने 18 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैगे ने। तनिष्ठा चटर्जी राधिका आपटे ते सुरविंद चावला इस फिल्म दे विच लीड रोल दे विच हैगे ने। फिल्म ने पेंडू भारत दी उन्हां महिलावां दी कहानी बयां कीती है जो पितृ सत्ता नाल लड़दे आजादी दी राह तलाशदियां हैगियां ने।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

पहले था कबूतर अब है ट्विटर, पहले थी बुक अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टाग्राम,

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट विरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

पहले था कबूतर अब है ट्विटर, पहले थी बुक अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टाग्राम, पहले थी जादू की जापी अब है वीडियो कॉल पे पप्पी। यही सोचकर पिछला और अगला

ट्रंप व्हाइट हाउस में आया तो सबने बोला एक होयो भाया, नाम से डोनाल्ड ट्रंप और हरकत से डोनाल्ड डक न

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: हाय, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicellpacific.com.

वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल सीईसी अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

बात करते हैं क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 339106222 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके असि तुहाडे कोल आ रहे हैं।
1: द लेजेंड हरभजन मान लाइव इन डिस्टेंस
2: सैटरडे 15 अगस्त 6:30 PM
0: मिलते हैं जी ब्रिस्बेन विच
2: एट ब्रिस्बेन सेंट्रल ऑडिटोरियम माउंट क्रवाट। टिकट्स एट प्रीमियर टिकट्स।
3: कहते हैं शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है,

0: essere tracciata.
1: Marihate lo sai che io sono il settore.

हर समस्या के सिर्फ तीन समाधान हैं, हर समस्या के सिर्फ तीन समाधान हैं। सब्र करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। सब्र करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। श्रीमद् भगवद गीता की ये बात जिंदगी के हर मोड़ पर, हर परेशानी में हमारे लिए बहुत जरूरी और कारगर है। अगर हम इसे याद रखें तो शायद हम जिंदगी के बहुत सारे डिसीजंस बड़े ही आराम से ले सकते हैं। तो चलिए आज एक बार फिर से जिंदगी के ऐसे ही पन्नों को समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। जीवन आधार में उस परम पिता परमेश्वर, उस ईश्वर, उस वाहेगुरु अल्लाह और जीसस क्राइस्ट के साथ जुड़कर उनकी कही गई बातों पर जरा ध्यान देके गौर करके अपने जीवन को एक आधार देते हैं, जीवन को सफल बनाते हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ सताक्षी आपके साथ जीवन आधार में और लेकर आई हूँ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर यही सफर। आज एक नई सुबह, एक प्यारी सी खूबसूरत सी जिंदगी से भरी सुबह आपके लिए फिर से। आइए इसे एक अगले गाने के साथ बढ़ते हैं आगे। सुनते रहिए मेरे साथ जीवन आधार।

कस्तूरी कुंडल बसए मृग ढूंढे वन माही, कस्तूरी कुंडल बसए मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटघट हरी हैं दुनिया देखे नाही, ऐसे घटघट हरी हैं दुनिया देखे नाही। रेडियो प्रसानी 1701 एम पर आप सुन रहे हैं श्रोताओं जीवन आधार सताक्षी के साथ। हम उस शक्ति को जो इस दुनिया को चला रही है, जिसे हमारी खुशी हमारे गम हर चीज का ख्याल है, या जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में कोई भी सिचुएशन आती है, उसको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढते हैं। मंदिर में, चर्च में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, हर जगह जाके हम उस शक्ति को खोजने की, उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि हमें उसकी कृपा मिल सके, हम उसे प्राप्त कर सकें। लेकिन देखा जाए तो आपके अंदर ही तो वो शक्ति है, आपके अंदर ही वो राम है जिसे आप ढूंढ रहे हैं, आपके अंदर ही वो अल्लाह है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। अपने मन के अंदर झांकिए। मन के अंदर कैसे झांकेंगे? ऐसे ही नहीं झांकेंगे। मन के अंदर तब झांकेंगे जब अपने मन को समझ पाएंगे। एक बार मन को समझ गए तो ईश्वर को कहीं भी ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हमेशा आपको हर जगह दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। आइए इसी बात पर एक और गीत के साथ बढ़ते हैं आगे, हमारे जीवन आधार के सफर में सुनते रहिए रेडियो ब्रह्मवाणी।

रेडियोप्रिस्वानी 1701 एम पर जीवन का आधार, जीवन आधार श्रोताओं आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ। आज अपने जीवन को आधार देने की, उसे समझने की, जानने की हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी। आइए इस अगले गीत के साथ बढ़ते हैं हमारे सफर में आगे।

दोस्तों, हम मनुष्य भी कितने अजीब हैं ना। मतलब दुख में तो ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन जब सुख के दिन होते हैं, जब सब कुछ जिंदगी में अच्छा चल रहा होता है, बेहतरीन चल रहा होता है, तो अक्सर रातें हमारी सोकर बीतती हैं, दिन खाकर गुजर जाते हैं। हर एक चीज की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं। हम दुनिया की सबसे कीमती या बेशकीमती चीजें पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे घर में सारी चीजें हमारे साथ हों, हमारे पास ऐसा कुछ भी ना हो सुख सुविधा से जुड़ा जो हमारे पास ना हो, है ना। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा कीमती चीज है, उसे हम अक्सर भूल जाते हैं। सांसारिक कीमती चीजों को पाने के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि उस ईश्वर से बढ़कर, उस परमपिता परमेश्वर, उस अल्लाह, उस वाहेगुरु से बढ़कर भला हमारे जीवन में कीमती और क्या हो सकता है। आपको जो मिलता है वो भी उसकी मर्जी, और जो नहीं मिला वो भी उसी की मर्जी। इसी बात पर ही अगला गाना सुनिए। इसे और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी। आप हैं सताक्षी के साथ।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं हर रोज की तरह आज एक बार फिर से रेडियो प्रसारणी 1701 एम पर, और इस आधार में आपका साथ निभा रही है सताक्षी। आज ईश्वर को, उस शक्ति को जो इस संसार को चलाती है, उसे पहचानने की, जानने की एक छोटी सी कोशिश, क्योंकि हम उसे पूरा कभी नहीं जान सकते, लेकिन जितना हम समझ पाए हैं उस ईश्वर को, उस परमपिता को, उसको जानने की एक छोटी सी कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं हमारे जीवन आराधना में। हमें यूं ही सुनते रहिए और आइए आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ।

पाकिस्तानी 1701 एम पर जीवन आधार आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ। हम अक्सर कहते हैं कि मन हमेशा सही होता है, मन हमेशा सच बोलता है, और इसीलिए जो मन कहे वही करना चाहिए। लेकिन यही मन है दोस्तों जो लालची है, जो सब कुछ खुद के लिए पाना चाहता है, सब कुछ खुद के लिए करना चाहता है। यही मन है जो चंचल है और चोर भी है, हर तरफ भागता है, आज यहाँ तो कल अपने फ्यूचर की न जाने कितने ज्यादा दिनों के फ्यूचर की प्लानिंग कर डालता है। मन आपका आज में रहता ही कहाँ है, वो तो कहीं भी कभी भी पहुंच सकता है। हाँ, पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, लेकिन आपका मन पहुंच जाता है। लेकिन इस मन के हिसाब से मत चलिए। माना कि ये मन हर जगह पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी इस मन के हिसाब से मत चलिए, क्योंकि ये मन ही है जो हर पल बदलता है, बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। कहते हैं ना, अभी आप कुछ सोच रहे थे, अब आप कुछ और बात कर रहे हैं। हमारा मन हमेशा अपने रास्ते खुद बना देता है। मन के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से मन को चलाइए, क्योंकि अगर एक बार आपका मन आपको कंट्रोल करने लगा तो परेशानी बहुत बहुत हो जाएगी। इसी बात पर एक और गाने के साथ बढ़ते हैं आगे। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी और रहिए।

आधार आप सुन रहे हैं हर रोज की तरह आज एक बार फिर से रेडियो प्रसवानी 1701 एम पर, और इस आधार में आपका साथ निभा रही है सताक्षी। आज ईश्वर को, उस शक्ति को जो इस संसार को चलाती है, उसे पहचानने की, जानने की एक छोटी सी कोशिश, क्योंकि हम उसे पूरा कभी नहीं जान सकते, लेकिन जितना हम समझ पाए हैं उस ईश्वर को, उस परमपिता को, उसको जानने की एक छोटी सी कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं हमारे जीवन आराधना में। हमें यूं ही सुनते रहिए और आइए आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ।

हिंदुस्तानी 1701 AM पर आप सुन रहे हैं जीवन आधार सताक्षी के साथ। अक्सर हम सब अपनी जिंदगी बहुत बड़ी चाहते हैं ना, हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ बहुत बड़ी हो ताकि हम जिंदगी के हर एक पल का मजा ले सकें और ज़्यादा दिन जी सकें, ज़्यादा दिन अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर सकें। फिर तो पता नहीं ये ज़िंदगी कब मिलेगी, मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, लेकिन ज़्यादा जियेंगे तो ज़्यादा इस ज़िंदगी को संवार पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि जिंदगी एक दिन की है, चार दिन की है या फिर सालों की है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसे जीते कितना है। बहुत सारे लोग तो बुजुर्ग भी हो जाते हैं लेकिन जिंदगी उन्होंने जी ही नहीं होती है। कम से कम वैसे मत बनिए। जिंदगी चाहे एक दिन की ही क्यों ना हो, लेकिन इसे इस अंदाज में गुजारिए कि ये दुनिया का एक सबसे खूबसूरत और प्यारा पल रहे और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए। आप अपनी ज़िंदगी का हर पल मुस्कुराते हुए बिता पाएं और औरों को मोटिवेशन दे पाएं। इसी बात पर आगे बढ़ेंगे एक और गाने के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी, आपके साथ है सताक्षी।

दोस्तों ये था आज एक बार फिर से जीवन आधार पर मेरा आपके साथ एक और साथ। कल फिर से एक ऐसे ही साथ पर हम और आप साथ साथ चलेंगे। कल हमें सुनना मत भूलिएगा और आज के सफर से आप लूंगी।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्बेन में। सो आइए सबसे पहले बात करते हैं ब्रिस्बेन की इम्पोर्टेंट लोकल अपडेट की। ब्रिस्बेन और ऑस्ट्रेलिया के कुछ मेजर सिटीज में स्टूडेंट्स ने वन नेशन और पॉलाइन हैंसन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए हैं। ब्रिस्बेन में भी स्टूडेंट्स रैलीज में शामिल हुई। आपको बता दें कि ये रैलीज जो है वो रेसिज्म और माइग्रेंट्स को लेकर पॉलिटिकल रेटोरिक के ऑपोजिशन में ऑर्गेनाइज की गई है। सो ब्रिस्बेन एक मल्टी कल्चर सिटी है दोस्तों। डिफरेंट कल्चर्स, लैंग्वेजेस और कम्युनिटीज यहाँ पर मिलकर इस सिटी को स्पेशल बनाती है और इसी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना भी काफी जरूरी है। सो मेरे लिए अभी जरूरी है आप सभी को ये प्यारे प्यारे गाने सुनाना। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे इन प्यारे प्यारे ट्रैक्स के साथ ऑन योर रेडियो ब्रिस्बेन।

हाँ जी, तो भाई ब्रिस्बेन में वीकेंड प्लान्स बन रहे हैं, तो भाई एका का नाम कैसे मिस कर सकते हैं। रॉयल क्विंसलैंड शो यानी कि एका अभी ब्रिस्बेन में चल रहा है और 16 अगस्त तक कंटिन्यू करेगा। राइड्स, फूड्स, एनिमल्स, लाइव एंटरटेनमेंट, बेसिकली ना पूरा फैमिली फन पैकेज है। अगर आप वीकेंड पर एका जा रहे हैं तो भाई एक चीज जरूर ध्यान में रखें, फोटो कम और मेमोरीज को ज्यादा बनाए। तो आइए इसी के साथ हम लेते हैं एक प्यारी प्यारी सी प्याली चाय के इन गीतों के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

हाँ जी, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो बसवानी। तो चलिए भाई, अब एक छोटी सी पॉजिटिव बात करते हैं। कभी कभी दोस्तों हम अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं। किसी के करियर आगे है, किसी का रिलेशनशिप परफेक्ट चल रहा है, किसी के पास ड्रीम हाउस है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, हमारी जर्नी का जो टाइमलाइन है वो सिर्फ हमारे पास है। आज अगर आप सिर्फ एक छोटा सा स्टेप भी आगे बढ़ाते हैं ना, तो वो भी प्रोग्रेस है। सो आज का प्यारा सा थॉट है, स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस, बस रुकना मत। जी हाँ, तो फ्राइडे को एक स्माइल के साथ स्टार्ट कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। इन प्यारे प्यारे गीतों के साथ सुनते रहिए रेडियो बिस्वानी। स्टे पॉजिटिव।

हाँ जी, तो आईएसए के साथ बढ़ते हैं आगे स्पोर्ट्स अपडेट के साथ। और दोस्तों, ब्रिस्बेन में इस वीकेंड लाइव स्पोर्ट्स का भी फुल एक्शन देखने को मिलेगा। अगर आप रग्बी और लाइव स्पोर्टिंग एटमॉस्फेयर एंजॉय करते हैं तो ब्रिस्बेन में वीकेंड इवेंट्स के लिए स्पोर्ट्स फैन के पास काफी ऑप्शंस हैं। और एक इम्पोर्टेंट अपकमिंग इवेंट भी याद रखिये दोस्तों, रॉयल एडिनबर्ग मिलिट्री जो टैटू है उसका ब्रिस्बेन शून 14th और 15th अगस्त को सन कॉप स्टेडियम में शेड्यूल्ड है, यानी कि आज से लेकर कल तक सन कॉप स्टेडियम में शेड्यूल्ड है। तो स्टेडियम का एटमॉस्फेयर, लाइव परफॉर्मेंसेस और वीकेंड एक्साइटमेंट ब्रिस्बेन में फ्राइडे से ही वाइब सेट है दोस्तों। आइए इसके साथ हम सेट करते हैं इस गीत के साथ अपना वाइब, ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। चलिए अब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का तड़का लगाते हैं। इंडियन म्यूजिक लवर्स के लिए भाई एक इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है। करण औजला का ऑस्ट्रेलियन टूर कंटिन्यू होने वाला है और रीसेंट वीजा कंसर्न के बाद टूर के आगे बढ़ने की जो कंफर्मेशन रिपोर्ट है वो हुई है। तो ऑस्ट्रेलिया में पंजाबी म्यूजिक फैंस के लिए भी डेफिनेटली गुड न्यूज है। और वैसे भी दोस्तों म्यूजिक की लैंग्वेज एक ही होती है, वो है फीलिंग्स। तो आइए इसी फीलिंग्स के साथ हम भी सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्वानी।

0: हर शीशे के दिल में एक तस्वीर है, एक शीशा दिल हमारे सीने में भी है जो हर दम इस मोहिनी सूरत को छुपाए रखता है।
1: अच्छा आगे।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्वानी में। सो दोस्तों, अगर आप अभी ड्राइव कर रहे हैं ना, तो सीट बेल्ट को ध्यान से पहनिएगा और सीट बेल्ट ऑन रखिएगा, फोन साइड में रखिए और म्यूजिक एंजॉय कीजिए, क्योंकि आज है भाई फ्राइडे। ट्रैफिक हो सकता है, काम का प्रेशर हो सकता है, लेकिन मॉर्निंग का मूड आप डिसाइड कर सकते हैं। ट्रैफिक आपके कंट्रोल में नहीं दोस्तों, लेकिन आपका एटीट्यूड आपके कंट्रोल में है, ये याद रखिएगा। तो आइए फिर, अब टाइम है एक ब्यूटीफुल म्यूजिक ब्रेक का, यानी कि ये प्यारा सा गीत आप सुनिए, आपके लिए एक ऐसा गाना जो फ्राइडे मॉर्निंग को थोड़ा और स्पेशल बना दे। सो वॉल्यूम अप कॉफी रेडी और ब्रिस्बेन, लेट्स मेक दिस फ्राइडे मॉर्निंग म्यूजिकल।

वेलकम बैक टू यूट्यूब रिस्वानी में, और ये एक प्यारा सा मैसेज मेरा उन लोगों के लिए जो आज ना थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं। अगर लाइफ भी एग्जैक्टली वैसे नहीं चल रही जैसे आप चाहते हैं ना, सो प्लीज डोंट गिव अप। कुछ चैप्टर्स जो है दोस्तों वो डिफिकल्ट तो होते हैं, लेकिन पूरी स्टोरी डिफिकल्ट नहीं होती। आपकी स्टोरी अभी बाकी है और हो सकता है भाई आपका बेस्ट चैप्टर अभी लिखा ही नहीं गया है ना। सो भाई अपने आप को लो फील मत कीजिए, प्यारे प्यारे म्यूजिक सुनिए और जो आपको अच्छा लगता है ना वो आज जरूर कीजिए। जी हाँ, इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन रेडियो ब्रेसवानी।

हाँ जी, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी में प्रोग्राम चानी का सफर, आपके अपनी दोस्त आरजे चानी जैन जैन के साथ। और दोस्तों, देखते ही देखते हम आ गए हैं अपने शो के एंड पर, लेकिन फ्राइडे अभी स्टार्ट हुआ है। आज किसी एक इंसान को कॉम्प्लीमेंट जरूर दीजिए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, और खुद के लिए भी भाई थोड़ा टाइम निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे चानी जैन, और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी। तो दोस्तों, इसी के साथ ये प्रोग्राम भी यहीं पर समाप्त होता है, और आप सुनते रहिए रेडियो ब्रिसवानी। हैव अ ब्यूटीफुल फ्राइडे ब्रिसबेन, ड्राइव सेफ, स्टे हैप्पी, और याद रखिए, हर सुबह एक नई बिगनिंग होती है। मिलते हैं नेक्स्ट शो में। गुड मॉर्निंग एंड हैव अ फैंटास्टिक वीकेंड दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, और सुनते रहिए रेडियो ब्रिसवानी।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ताइवान की सरकारी एजेंसियों पर बड़ा विदेशी साइबर अटैक, हैकर्स ने एआई एजेंटों के जरिए बनाया निशाना, जांच में हुआ खुलासा। ताइवान की सरकारी एजेंसियों को पिछले महीने एक बड़े विदेशी साइबर हमले का सामना करना पड़ा। ताइवान के डिजिटल मामलों के मंत्रालय के अनुसार हैकर्स ने संवेदनशील डेटा और सिस्टम्स में सींद लगाने के लिए मैनुअल तरीकों के साथ साथ ओपन क्लॉ जैसे एआई एजेंटों का इस्तेमाल किया। हालांकि प्रभावित एजेंसियों ने इस घटना को सफलतापूर्वक कंट्रोल कर लिया है। आसमान में सूर्य और चंद्रमा का अद्भुत मिलन, यूरोप में दिखा सूर्य ग्रहण का दुर्लभ नजारा, ब्रिटेन में 90% ढका सूरज। यूके और यूरोप के आसमान में हाल ही में एक ऐतिहासिक खगोलीय नजारा देखा गया जिसने लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पिछले लगभग 3 दशकों में क्षेत्र का सबसे शानदार नजारा दुर्लभ सूर्य ग्रहण के रूप में दिखा। पाक के भारी भरकम सैन्य बजट की बढ़ोतरी पर यूएस सख्त, 1.33 लाख करोड़ के खर्चे का मांगा हिसाब। गंभीर आर्थिक संकट के साथ गुजर रहे पाकिस्तान ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपने रक्षा बजट में बड़ी बढ़ोतरी करते हुए इसे 1.33 लाख करोड़ रुपए घोषित किया है। ये भारी भरकम राशि पाकिस्तान के कुल 6.38 लाख करोड़ रुपए के केंद्रीय बजट का लगभग 20.84% हिस्सा है। अपनी डगमगाती अर्थव्यवस्था के बावजूद सेना पर पानी की तरह पैसा बहाने की इस नीति ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चौंका दिया है। विशेष रूप से अमेरिका ने इस भारी सैन्य आवंटन पर अपनी गहरी चिंता जताई है। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबर। पीएम मोदी और शाह की मौजूदगी में वंदे मातरम के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ लोकसभा का मानसून सत्र। नीट परीक्षा के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही को लेकर संसद में जारी गतिरोध के बीच मानसून सत्र के आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले वंदे मातरम का पूर्ण गायन हुआ और उसके तुरंत बाद स्पीकर ओम बिरला ने संसद का सदन स्थगित किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की कड़ी आलोचना की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आलोचना ज्यादा चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट वाले पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के पैकेट पर चेतावनी वाले लेबल लगाने में देरी को लेकर की। एक रिपोर्ट के मुताबिक बेंच ने कहा, यह आपका आखिरी मौका है, अगली बार हम फैसला सुनाएंगे। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अगस्त और फ्राइडे है हमारे साथ जुड़े हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन. कहना चाहेंगे हैप्पी फ्राइडे, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. अभी से लेकर 9 बजे तक हमारा ये साथ रहेगा. बहुत ही खूबसूरत सा वेदर है आउटसाइड, अगर वॉक के लिए निकले हैं आप या ऐसे ही टहल रहे हैं. यू हैव द बेस्ट. मैं हूं आपके साथ ही नीलम. ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से आपको. आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे आज. चलिए सुबह का आगाज करते हैं.

बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे सुबह के सफर में। और चलिए आगे बढ़ते हैं, फोरकास्ट में क्या बताया गया है। ब्रिस्बेन के लिए 11 डिग्रीज अभी है, सनी डे आज रहेगा, 23 टॉप्स रहेंगे। और सैटरडे को 60% चांस रेन बताया गया है, संडे को 65% चांस रेन बताया गया है। मेलबर्न में 10 डिग्रीज अभी है, क्लाउडी डे रहेगा, टॉप्स रहेंगे 16। विंड गस्ट बताया गया है 13 किलोमीटर एन आवर। और कैनबरा के लिए बताया गया है 2 डिग्रीज अभी है, हेजी रहेगा और रोड कंडीशंस डिफिकल्ट रहेंगे और टॉप्स रहेंगे 14। सिडनी के लिए 8 डिग्रीज अभी है, सनी डे, टॉप्स रहेंगे 18। 20 किलोमीटर्स एन आवर विंड गस्ट बताया गया है। गोल्ड कोस्ट के लिए बताया गया है 12 डिग्रीज अभी है, सनी डे, टॉप्स रहेंगे 21। और विंड गस्ट बताया गया है 17 किलोमीटर एन आवर। और सनशाइन कोस्ट के लिए बताया गया है 14 डिग्रीज अभी है, मोस्टली सनी डे रहेगा, टॉप्स रहेंगे 20। विंड गस्ट बताया गया है 22 किलोमीटर एन आवर। सो ऑल इन ऑल ब्यूटिफुल डे इज कमिंग अप। चलिए दोस्तों हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत करते हैं, नमस्कार, गुड मॉर्निंग कहना चाहेंगे, आगे बढ़ते हैं।

मिट्टी से उजली बड़ी भोली तेरी दुनिया, चलने में तीर है इतनी शरीर है बड़ी जिद्दी मेरी मुनिया। गोरी जरा हंसती

0: तो बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत फिल्म असली नकली से इसको लिया और देवानंद पर फिल्माया गया, बहुत ही खूबसूरत सा। वैसे हंस दे तू तो हंसने हंसी से ये अपना दिन आप शुरू कीजिएगा और सब कुछ ठीक ही होगा। और चलिए दोस्तों, जो कि अगस्त का महीना है और इसको श्रावण महीना भी कहते हैं और वेल सेटल इन हम हो गए हैं सिंस इट्स 14th of August, तो कुछ जानकारी तो आप जानते ही होंगे कि सच ऑस्पिशियस मंथ कि इसमें ढेर सारे जो डिवोशनल वर्क होता है, हमारे छोटे छोटे जो व्रत होते हैं, फास्टिंग होते हैं, ये भी सभी डेज में फॉलो होता है। सो मंडे का जो जो सोमवार फास्ट डेज होता है, बहुत ऑस्पिशियस होता है। तो अगर आप कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर जानते नहीं हैं तो अपने जो पंडित जी हैं उनसे बात कर सकते हैं एंड यू विल गेट वेल्थ ऑफ नॉलेज तो आपको मिलेगा। सो आपको गाइड करेंगे। लेकिन इसका जो जो श्रावण महीना है कनेक्टेड टू लॉर्ड शिवा, सो ऑल इन ऑल ये कोइंसाइड होता है लाइफ गिविंग मॉनसून रेन से। सो यहाँ पर कैसे लॉर्ड शिवा से कनेक्टेड रहता है, ये समुद्र मंथन इसी टाइम हुआ था। एंड यहाँ पर जब क्या हुआ था, जब ड्यूरिंग द चर्निंग ऑफ द कॉस्मिक ओशन जब हलाहल जो पॉइजन है वो आया था, तो शिव लॉर्ड शिवा ने उसको धारण किया था। सो ये कनेक्टेड है ड्यूरिंग दिस मंथ। एंड देन गॉडेस पार्वती का जो डिवोशन है ड्यूरिंग दिस टाइम, पेनेंस, जब वो घोर तपस्या कर रही थी लॉर्ड शिवा के लिए, सो दिट वॉज दिस टाइम एज वेल। एंड और जो श्रावण का महीना है ये बेसिकली मार्क्ड बाय द स्पेशल फास्ट ड्यूरिंग एंड प्रेयर्स। और यहाँ पर ढेर अगर आप मेडिटेशन करते हैं एवरीथिंग बहुत ही अच्छा है, एंड दिस इज फॉर प्योरिफिकेशन एंड पॉजिटिव एनर्जीज एंड एवरीथिंग। और इसका जो कॉस्मिक और सीजनल सिग्निफिकेंस दोस्तों है, तो ये मानसून रिन्यूअल तो ऐसा ही है, ये जो श्रावण है वैसे ही आपको बता देता है कि पानी का महीना है। तो यहाँ पर ढेर सारे मानसून जो रेन है वो होता है। एंड ऑल्सो एस्ट्रोलॉजी अगर आप देखते हैं तो द नाइट इज रूल्ड बाय द श्रावण नक्षत्र, सो दैट मीन्स द स्टार्स रूल द स्काइज इन दिस महीना। सो इट एम्पलीफाइज द पॉजिटिव एनर्जी फॉर प्रेयर्स एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड न्यू बिगिनिंग्स। सो या सो जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन देयर। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा गीत हम लाए हैं।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

0: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
3: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. Aap sun rahe hain Radio Briswani.
4: Hi, this is Salman Khan.
5: Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
6: Hi, this is Deepika Padukone. Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, main hoon Tulsi Kumar aur aap mujhe sun rahe hain Radio Briswani.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
11: सुबह का सफर में आप शामिल है, इट्स 7:32 और समय हुआ कि हम आपके घर आए और आपके साथ सेलिब्रेट करें आपका जन्मदिन। दोस्तों, विश करना चाहेंगे वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मी एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जो अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं या एनी स्पेशल इवेंट आप अपने लाइफ का आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। बेस्ट विशेस फ्रॉम मी एंड लॉट्स ऑफ लव। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं

0: ਸਤਰੰਗੀ ਪਿੰਗ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂਰ 2026 ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।
1: The legend Harbhajan Mann live in Brisbane Saturday 15th August 6:30 PM
0: ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਿੱਚ
1: at Brisbane Central Auditorium Mount Cravat tickets at Premier Tickets।
2: दोस्तों हमारे हाथ एक कविता लगा है और इसको हम शेयर करना चाहेंगे। सो इट गोज लाइक दिस। श्रृंगार किया करो, श्रृंगार केवल चेहरे का नहीं मन का भी किया करो। थोड़ा धैर्य पहन लिया करो, थोड़ी विनम्रता ओढ़ लिया करो। आंखों में करुणा का काजल, शब्दों में मधुरता की बिंदी लगा लिया करो। दुनिया को सुंदर बनाने से पहले अपने भीतर एक सुंदर मन सजा लिया करो। यकीन मानो, जिस दिन आत्मा मुस्कुराने लगेगी उस दिन दर्पण भी कहेगा आज सचमुच श्रृंगार किया है। बहुत ही खूबसूरत एंड आई थॉट इट वाज रियली अमेजिंग वर्ड्स देयर। चलिए दोस्तों, आपको अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा। चलिए एंजॉय करते हैं

वापस तो बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे। और चलिए ट्रैफिक अपडेट आपको देते हैं। पैसिफिक मोटरवे उलंगाबा, यहाँ पर स्टेशनरी व्हीकल हजार्ड है। लेन और लेन्स आर रिड्यूस साउथ बाउंड टुवर्ड्स ग्रीन स्लोप्स। और एडवर्ड स्ट्रीट ब्रिस्बेन सिटी, यहाँ पर स्टेशनरी व्हीकल है। लेन और लेन्स आर रिड्यूस बोथ डायरेक्शंस। तो दोस्तों, मुझे एक छोटा नोटिफिकेशन मैंने देखा है, मुझे अच्छा लगा। सो कहते हैं कि नोटिस हाउ द जीपीएस नेवर सेज मेड अ मिस्टेक, इट जस्ट सेज रीकैलकुलेटिंग रूट एंड दैट्स लाइफ। ये हमारी जिंदगी है कि हम हमेशा कहते तो जरूर है कि मिस्टेक होता है, लेकिन ऐसा हमेशा लेकर बैठना नहीं चाहिए अपने दिमाग में कि मिस्टेक कर दिया है मैंने। बिकॉज जब आप यू नो व्हेन यू से मिस्टेक किया है, देन इट्स लाइक अ फुल स्टॉप। एंड अगर आप कहते हैं रीकैलकुलेटिंग रूट, दैट मींस देयर आर मोर ऑप्शंस, राइट? अगर आप मन में ये बात सोचते हैं, थिंक अबाउट इट, अगर मिस्टेक के बाद आपको ऐसा लगता है एक डॉट है, बिंदी है, खत्म हो गया सब कुछ, एंड देन अगर आप रीकैलकुलेटिंग रूट बोलते हैं या सोचते हैं अपने अपने दिमाग में, तो ढेर सारे रास्ते दिखते हैं आपको। और ओ माय गॉड, इट्स अमेजिंग, ढेर सारे रास्ते दिखते हैं, ऑप्शंस दिखते हैं और आइडियाज भी आते हैं। तो कभी आपसे कोई गलती अगर होती भी है, जरूरी नहीं है कि आप ये कहें कि ये मिस्टेक हो गया, क्योंकि यू डन। ये जरूर सोचे कि चलो और भी रास्ते हैं। सो यू आर रिकैलकुलेटिंग द रूट। यस, अमेजिंग। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी, आपकी अपनी पहचान। नीलम का साथ है, हमारे साथ अभी जुड़े हैं, स्वागत करते हैं आपका। इट्स 7:44।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

सो बहुत ही खूबसूरत से गीत आप सुन रहे थे फिल्म धमाल फोर से, ये लिया हमने इस गीत को। और चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई इंसान कहीं जाता है या आप कहते हो या अकेले रहना पसंद करता है, तो आप कुछ लोग के ऐसे कहते हैं या फिर कि या फिर आप अगर अकेले रहते हो तो इसका मतलब नहीं है कि आप लोनली हो, और कुछ लोगों को बहुत पसंद रहता है कि आप अकेले रहते हैं, बिकॉज दिस इज द टाइम एक्चुअली यू आर एबल टू लिसन टू योर सेल्फ और जो आप हो। तो दोस्तों सॉलिट्यूड इस मतलब नहीं है कि इस इजंट ऑलवेज लोनलीनेस। तो जैसे हम फास्टिंग करते हैं अपने बॉडी का, अपने डाइजेस्टिव्स का, तो जरूरी नहीं है कि हम अपने आप को हर्ट कर रहे हैं या आई नो ढेर तरह का फास्टिंग होता है, फास्टिंग रहता है फॉर वेट लॉस अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं, या फास्टिंग रहता है कोई स्पिरिचुअल कोर्स के लिए। और जरूरी नहीं है कि फास्टिंग एसोसिएट होता है कि यू स्टार्विंग योरसेल्फ। इट इज ये माइंड का कंट्रोल करने का चीज है, सो फास्टिंग इज रिलेटेड टू दैट एज वेल। तो जब हम डाइजेस्टिव को फास्ट करके सुधार सकते हैं, तो अपने माइंड को भी फास्ट करके सुधार सकते हैं। सो माइंड को किस तरह से फास्टिंग करते हैं, तो यहां पर ऐसे बताया गया है कि समटाइम्स यू नीड टू फास्ट फ्रॉम पीपल एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। एंड यू डोंट नीड अ वेकेशन, वेकेशन पे नहीं जाना, कोई हॉलीडेज आपको प्लान नहीं करना है ताकि आप लोगों से दूर रहे। यू जस्ट नीड अ फ्यू डेज वेयर नोबडी कैन रीच यू। और जरूरी नहीं है कि अगर एंड यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन योरसेल्फ, आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। एंड जरूरी नहीं है कि सभी मैसेजेस जो आपके पास आते हैं आप सभी को, अब ऐसा नहीं है कि आप फोन ऑफ कर कर गायब हो जाए, ऐसा नहीं है। यू आर कॉन्टेक्टेबल, अगर जो नीडेड है, जो आपको करना है वो आप कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको हर मैसेज का रिप्लाई करना पड़ता करना चाहिए।

0: So, and also no checking who replied and no forced conversations. Kabhi kabhi keval quietly baithna is really, really important as well. Zaruri nahi hai, you have to just make conversation. Kisi ke saath, hardly ever you come across people jiske saath aap keval baith sakte hain. You don't need to make conversation, and that's enough. And yeah, it's hard to find people. And imagine jab aap apne pet ke saath ho, apne dog ke saath ho, and kabhi relate kare aap apne aap se ki jab aap apne dog ke saath baithe ho ya park mein ho, kahin baithe ho ekant mein, he's not talking to you obviously. कितना सुकून है. कभी ये मैंने सोचा नहीं था कि दैट्स वाई, बिकॉज यू डोंट नीड टू मेक कन्वर्सेशन एंड यू नॉट फोर्स टू मेक कन्वर्सेशन एंड दैट इट्सेल्फ इज द बिगेस्ट थिंग एवर. तो दोस्तों, नो फोर्स कन्वर्सेशंस दैट यू डोंट इवन वांट टू हैव. सो एंड क्योंकि ऐसा होता है, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेस रखते हैं पीपल के साथ, देन आप क्या होता है, यू फॉरगेट कि आपका जो माइंड है वो कैसा साउंड करता है, यू नो, एंड यू आर ओवर स्टिमुलेटेड बेसिकली. स्टार्ट अब्सॉर्बिंग दूसरों के ओपिनियंस, उनके प्रॉब्लम्स, उनके एक्सपेक्टेशंस, देयर मूड्स, अंटिल ऐसा होता है कि आप जान नहीं पाते कि आप कौन है. यू डोंट नो व्हाट यू थिंकिंग एनी मोर. सो इट्स बेटर टू डिसअपीयर फॉर अ लिटिल व्हाइल, रीड, वॉक, pray and think, of course, and sleep. Do the things that make you feel like yourself again. And when you come back, you may realize you weren't lonely, you were just overstimulated. So dosto, you don't have to cut everyone off. Just remember, access to you is a privilege, and aapke boundaries hone chahiye. Sometimes the healthiest thing you can be is to become unavailable. To dosto, so you're just not blocking everyone, but you're there, but not emotionally. So agar aapko jo bhi karna hai aap kar rahe hain, lekin कॉन्स्टेंटली फोन ने चेक कर रहे हैं, आप रिप्लाइज ने अवॉइड कर रहे हैं, आप अगर किसी को रिप्लाई नहीं करना चाहते हैं आप वो कर रहे हैं. सो दीज आर द थिंग्स दैट प्रोटेक्ट योर इनर पीस. सो थिंक अबाउट इट. अगर आप सोच रहे हैं कि यू नो फास्टिंग फ्रॉम पीपल, कम ऑन, इट्स अ बिट टू मच, नहीं, ऐसा नहीं है. क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन देर आर टाइम्स जब हम एकदम से जान नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना है, और वहां पर अपना जो फास्टिंग होता है, माइंड का फास्टिंग, ये बहुत बहुत जरूरी है. सो यू हैव अ क्लीन स्लेट टू स्टार्ट विद. चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं. बहुत ही खूबसूरत से गीत लाए हैं, तो आपकी कसम से.
1: सुनो,
2: कहो,
1: कहा,
2: सुनो.

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: वेलकम बैक दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। इट्स 818 और फ्रेडरिक स्ट्रीट टूओंग, यहाँ पर मल्टी व्हीकल क्रश बताया गया है। लेन और लेन्स आर रिड्यूस्ड नॉर्थ बाउंड टुवर्ड्स एवर्टन पार्क। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और सिंस फ्राइडे है दोस्तों, तो क्या होता है कि लोग बड़े जल्दी में रहते हैं और इधर उधर यू नो भागते रहते हैं। आई नो राइट। और जो करना है बड़े जल्दी में करते हैं, तो इट्स टाइम टू जस्ट टेक इट इजी। और जरूरी नहीं है सभी चीज भाग कर ही किया जाए, यू कैन रिलैक्स एंड डू इट एज वेल। और एंड जस्ट गिव योरसेल्फ टाइम, अगर कहीं पहुंचना है टाइम से जाइए, ताकि आपको रश ना करना पड़े। बिकॉज रश करते हैं फिर दिमाग का भी ओवर टाइम वर्क होता है, बॉडी का भी ओवर टाइम वर्क होता है। हाँ, अगर आप दौड़ना पसंद करते हैं दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन सभी चीज़ का अलग अलग टाइम होता है। एक्सरसाइजिंग का अलग टाइम रहता है, अगर कोई काम के लिए जा रहे हैं उसका अलग टाइम रहता है। और उसके साथ साथ होना चाहिए कि आपका माइंडसेट भी रेडी हो। और अगर आप हड़बड़ी में सब कर रहे हैं देन दैट मीन्स यू आर नॉट रेडी फॉर इट। सो बेहतर होगा कि आप अपने आप को टाइम दें, जहाँ भी जा रहे हैं रास्ते पर है दोस्तों बेहद ख्याल रखिए। और फ्राइडे है, लॉट्स ऑफ एंगर ऑन द रोड एज वेल। और बड़े जल्दी में लोग निकलते हैं, रूल्स नहीं फॉलो करते हैं, फ़ोन पर रहते हैं आज भी। एंड यू थिंक कि यू नो कि रोड रूल्स और इतने फाइन्स के होते हुए भी लोग फ़ोन पर रह लेते हैं, एंड इट्स अमेजिंग they're not scared। और चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एंजॉय करते हैं ये खूबसूरत से गीत।

0: से झनकार सी है दिल के तार में तब से।
1: बस तो बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे, फिल्म परम सुंदरी से इस गीत को हमें लिया। और कुछ लोगों का हमेशा ये विंज रहता है कि उनको सब कुछ मिलता नहीं है, यू नो, और whether it be professionally or personally or anything, and हमेशा ये शिकायत रहती है। दोस्तों ये ज़रूर याद रखें कि मनचाहा अगर सब कुछ मिल जाता है तो क्या ख्वाब होता है और क्या ज़िंदगी। तो यू नो एंड तो ख्वाब भी रहना ज़रूरी है, यू नो, उसका भी लुत्फ़ उठाना चाहिए, उसको भी मज़े से ख्वाब देखना चाहिए। और ज़िंदगी तो ज़िंदगी ही है, रियलिटी है, लेकिन सब कुछ मिलना भी इट्स नॉट गुड एज वेल आई थिंक। एंड और व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, सब कुछ मिलना चाहिए सभी को? देखो ट्रम्प को ही देख लो आप, सब कुछ नहीं मिलता उसको, तो ही इतना जंग कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं ये गीत।

तो बहुत ही खूबसूरत सा गीत फिल्म विश्वात्मा से इसको हमने लिया और आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव प्लेड दिस सॉन्ग एंड आई लव्ड इट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आधे घंटे का सफर बाकी है। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी, आपकी अपनी पहचान, और याद दिला दे कि 9 पर जुम्मा प्रोग्राम है। और चलिए दोस्तों हमारे पास एक फेस पैक का रेसिपी है और इसको लेते हैं बीटरूट से। बीटरूट की जो खूबियां हैं तो आप जानते ही हैं कि उसमें ढेर सारा एंटीऑक्सीडेंट्स है और ये स्किन को किस तरह से अफेक्ट करता है, इसे डिटॉक्सिफाई करता है स्किन को और हाइड्रेट करता है, और इसमें जो एक्नी इसे फाइट करने एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी है। तो अगर आपको एक्नी है आप तभी भी यूज कर सकते हैं ये जो फेस पैक मैं बताने जा रही हूँ। सो बीटरूट आप लेते हैं स्मॉल और उसको वॉश कर ले, पील कर ले और फिर ग्रेट करें। उसमें से जो जूस निकलता है उसमें आप डारे एक टीस्पून हनी ओ योगर्ट, आप दोनों में से या फिर दोनों ही मिला सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा बेनिफिट, राइट। एंड देन आपने जो धुले हुए फेस पर आप अप्लाई करते हैं ये जूस और मास्क इवनली, एंड अवॉइड करें लिप एरिया एंड अवॉइड करें अपने आंख, और इसको अबाउट 10 से 15 मिनट तक आप रहने दें, एंड देन रिंस ऑफ विद ल्यूकवॉर्म वाटर, पैट ड्राई एंड फॉलो अप विद अ मॉइस्चराइजर। बहुत ही सिंपल, और आप अगर एक्नी है आपको और यू नो थिंग्स लाइक दैट, अगर फेस को ब्राइटन करना चाहते हैं, हाइड्रेट करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज दिस बीटरूट फेस पैक। एंड अगले हफ्ते आई थिंक हमारे पास एक बीटरूट को लेकर एक लिप स्क्रब है, तो वो लाएंगे आपके लिए, तो शेयर करेंगे। टिल देन चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत खूबसूरत सा ये गीत है। आई हैवंट प्लेड दिस इन अ व्हाइल एक्चुअली। फ्राइडे आप एंजॉय कर रहे हैं, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं शायद 8:33। ऐसे कहते हैं जागने के अबाउट 1.5 आवर बाद आपको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, मगर आप अभी तक नहीं किए हैं ना फास्ट। आज फास्ट का दिन है एंड टू मच फास्टिंग की टॉक हो गई है, आपको फास्ट नहीं करना है, एंजॉय ब्रेकफास्ट।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Sat Sri Akaal, madam, namaskar, dosto, main haan tuhanu apna Harbhajan. Ek var phir Satrangi Ping Australia Tour 2026 leke assi tuhade kol aa rahe hain.
3: The legend, Harbhajan Mann, live in Brisbane,
4: Saturday 15th August, 6:30 PM.
2: Milde hai ji, Brisbane vich.
4: At Brisbane Central Auditorium, Mount Gravatt. Tickets at Premier Tickets.
5: वेलकम बैक दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में आ जाते हैं, और आप सोचते हो कि जितना बड़ा प्रॉब्लम है उतना ही बड़ा जो क्या कहते हैं सॉल्यूशन होना चाहिए, या फिर हम ये सोच कर रखते हैं कि इतना बड़ा कुछ हो गया है, पता नहीं इसका कैसे कैसे इसको सुलझा पाएंगे हम, इसको इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो द थिंग इज कि एनर्जी हम देते हैं जितना जिसको या जिस प्रॉब्लम को, उतना ही वो बड़ा लगने लगता है। तो जितना कम एनर्जी दे, अब इतना ऐसा नहीं है कि यू जस्ट स्वीप इट अंडर द कार्पेट। अगर कोई प्रॉब्लम है उसको यू कांट जस्ट स्वीप इट अंडर द कार्पेट, यू हैव टू फेस इट। एंड द थिंग इज, जरूरी नहीं है कि बड़ा प्रॉब्लम है तो बड़ा ही उसका जो सोल्यूशन है वो होगा। कभी कभी छोटी सी चीज भी छोटी सी एक चेंज अगर आप करते हैं वो सॉल्व कर देता है एक बड़ा सा प्रॉब्लम। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, कोई भी प्रॉब्लम हो, ट्रांसपेरेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसपेरेंट होना, कम्युनिकेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक उदाहरण दिया गया है, एक डो, राइट? अ डो इज मच स्मॉलर कम्पेयर टू द हाउस। अ लॉक इज मच मच स्मॉलर कम्पेयर टू द डो। A key is the smallest of all, but a key can open an entire house. So, a small thoughtful solution can solve major problems. तो दोस्तों, कभी निराश ना हो, कभी ये ना सोचे कि कि problems बड़ा है तो बड़ा ही सुझाव होगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी छोटी छोटी जो चीजें हैं वो ही बड़े बड़े चीजों को हल कर देता है, बड़े बड़े problems को। चलिए enjoy करते हैं ये गीत। दोस्तों, सुबह का सफर में शामिल है, कुछ ही समय बचा है हमारे आपका साथ का। आई होप यू एंजॉयिंग योर फ्राइडे। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी लंबा जाना है। आई एम श्योर आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा।

दोस्तों अब तो जाने का वक्त हो गया है और आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत मजा आया और आशा है कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे। हैव अ लवली डे एंड अ ब्यूटिफुल वीकेंड। मिलते हैं अगले हफ्ते। टिल देन नमस्कार।

है रेडियो 79 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701 3279-1701।

0: दिलों को झंकृत करे,
1: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत से रंग बिखेरे।
2: और अभी से लेकर 10 बजे तक रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान। आज का दिन शुक्रवार का दिन आप सबके लिए शुभ हो, और आज जुमा है और आप सब सुनने वालों को जुमा मुबारक। आप सबको हमारा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाह व बरकातुह। और शुरुआत कर रहे हैं हमारा रेगुलर सेगमेंट आज जुमा है।
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान। मैं आपको याद दिला दूं कि हर रविवार के सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक आपके लिए हम पेश करते हैं हमारा साप्ताहिक इस्लामिक प्रोग्राम, जिसमें आप सुन सकते हैं सवाल और जवाब हजरत मौलाना फजल दाद के साथ। और हर जुमे के दिन फ्राइडेज को आपके लिए 9 से लेकर 9:30 बजे तक महरूम हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान के साथ आप सुनते हैं जुमा बयान। और फिर 9:30 से लेकर 10 बजे तक आपकी खिदमत में ओल्ड विंटेज कवाली, हमारे पर्सनल प्लेलिस्ट से निकाली हुई चुने हुए ओल्ड विंटेज कवाली।

मत को बाहर सूरत बदलना चाहिए, अपनी किस्मत को, अपनी किस्मत।

और इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूं हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक स्टेशन रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर। आपके साथी फिरोज खान संगीत की जानकार हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक 79 ब्रिस्बेन पर। हर जुमे के दिन शुक्रवार को हम आपके लिए पेश करते हैं हमारा विशेष प्रोग्राम। आज जुमा है, 9 से लेकर 9:30 बजे तक आप सुनते हैं महरूम बशीर अहमद दीवान से जुमा बयान, और उसके बाद हम करीबन 9:30 से लेकर 10 बजे तक आपकी खिदमत में पेश करते हैं चुने हुए मजहबी कवालियाँ, ऑल विंटेज कवालियाँ। अगले एक बार तक के लिए आपके साथी फिरोज खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।